सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: 92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: 92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओं, कन तोहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

ये तो हाँ सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक ता सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया कनिष्ठ सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

ए तुहां सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे इस कार्यक्रम सुनने दे माटी दी महक ता सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तुहां सारे इए ही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

जाओ।

91.2 MHz पर ए है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहा सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहा सारे ए बनी रिया सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पास।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के रात में चांदी के रूम से चटनी चटाया।
4: चटाई।
2: ओहो। दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
14: मैं तो बुरी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतों, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

भजन धर्मशाला और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ही है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

0: तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।
1: तेरी आंखों का जादू

91.2 FM पर आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है, रहा।
2: चंदू के चाची को चांदी के रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ा।
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो
8: हैं। कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे।
9: बस दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
11: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
12: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
11: क्यों?
12: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए।
13: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
14: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
15: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
16: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
17: मैं तो बुरी।

0: उसे कहते हैं इंसान बुरा जन्म से नहीं होता, उसे बुरा बनाने में अक्सर हालात और लोगों का व्यवहार जिम्मेदार होता है। जिसे बार बार ठुकराया जाए वो धीरे धीरे लोगों से दूर होना सीख जाता है। जिसके भरोसे को बार बार तोड़ा जाए वो हर किसी पर शक करने लगता है। इसलिए किसी को बुरा कहने से पहले ये ज़रूर सोचिए कि उसे ऐसा बनाया किसने। नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो बहुत ही प्यारी सी सुबह की शुरुआत आप सभी की हो चुकी है और आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है आप सभी का बेहद खूबसूरत प्यारा सा कार्यक्रम लेकर, गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो आप सभी को, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज 16 अगस्त 2026 का दिन, रविवार का दिन, अपनों का दिन, अपनों के प्यार का दिन। किस तरीके से बढ़ाया जाता है? अपनेपन से ही बढ़ाया जाता है जी दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की सुबह की शुरुआत आप सभी की बहुत अच्छे से हो चुकी है और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। तो आइए इस सिलसिले को शुरू करते हैं और इस मस्ती को दोगुना और बढ़ा देते हैं, क्योंकि छुट्टी वाला दिन है तो इसे मस्ती से भरना तो बनता है। तो आइए दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ। तो आइए शुरुआत करते हैं मनोरंजन के कार्यक्रम में इस प्यारे से खूबसूरत से गीत के साथ।
1: जब आसमान से
2: बाय बाय।

जी दोस्तों बहुत ही प्यारा सा मीठा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला आप सभी इस समय एंजॉय कर रहे हैं अपने रेडियो सेट से। जी दोस्तों बरसात की धुन बहुत ही प्यारी भी होती है तो कभी कभार बहुत ही भयानक भी हो जाते हैं। जिस तरह से शाम की हम बात करें करीब 8-9 बजे के आसपास की तो बहुत ही भयानक वाली बारिश हो रही थी, लेकिन खैर कहते हैं ना बरसात का मौसम है तो बारिश तो होगी ही। लेकिन हाँ एक बात हमेशा याद रखिए कि बरसात का मौसम है और ऐसे में कई कबार क्या होता है कि कई जगह थोड़ी सी डिस्टेंस पे बारिश नहीं होगी, या आप घर से निकल रहे हैं बारिश नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ट्रैवल करते हैं आप है ना तो उसके बाद जो है बारिश रास्ते में शुरू हो जाती है। तो हम इसी मतलब धोखे में निकलते हैं कि बारिश है नहीं तो कोई बात नहीं, छाता नहीं लेकर चलते हैं और फिर हमें बारिश में भीगना पड़ता है। तो इस धोखे में या गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए, बरसात के मौसम में छाता अपने साथ हमेशा लेकर चलिए क्योंकि बारिश कहाँ से शुरू हो जाए कोई नहीं जानता। और धर्मशाला की बात करें तो सचमुच ऐसा ही होता है। खैर आज तो छुट्टी मना रहे हैं आप सभी, लेकिन जब भी अपने ऑफिस के लिए स्कूल के लिए बच्चों को भेजते हैं तो उनके साथ छाता ज़रूर दीजिए जी। तो दोस्तों मौसम की अपडेट की हम बात करें, ये तो आंखों देखा हाल जो है वो आप सभी के साथ साझा किया, लेकिन 19 से 20 डिग्री के सेल्सियस के आसपास जो है इस समय आप धर्मशाला का तापमान जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो आइए इसी मौसम की अपडेट के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रोचिका की तरफ से।

दोस्तों इस प्यारे से गीत को आप सभी ने एंजॉय किया अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में, फिल्म तेरे बिना से लिया था जी। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत से सूप है, बहुत ही खूबसूरत

0: भाव, एक नया पन्ना जिंदगी का खुलता है हमारे सामने। उस पन्ने को कैसे हम निखारते हैं, कैसे हम भरते हैं, कौन कौन से यादगार पलों को उसमें पिरोते हैं, ये हमारे हाथों में होता है। दुख भरे पल या फिर खुशियों से भरे पल जो कि चेहरे पे मुस्कान ले आए। दोस्तों, यही जिंदगी है। उतार चढ़ाव जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। खैर, ये बातचीत का सिलसिला है और इसी तरह से चलता रहेगा। कुछ ही समय में, यानी कि कुछ देर बाद, आप सभी सुनने वाले हैं प्रादेशिक समाचार। 9:20 हो चुके हैं दोस्तों, और बातचीत से हटकर अब आप सभी को लेकर चलते हैं समाचारों की ओर। तो एंजॉय कीजिए प्रादेशिक समाचार, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगी इन बहुत ही प्यारी प्यारी सी, खूबसूरत सी, जानकारी से भरी बातचीत के साथ।
1: मिलकर काम करने का किया आह्वान, राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें कर रहा नमन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा के तीसा में जल शक्ति विभाग के लिए लगभग 27.5 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। राज्य स्तरीय जनजाति उत्सव के तहत हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति और जनजातीय परंपराओं की मिल रही शानदार झलक। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी, कल राज्य के 5 जिलों के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई ना बनाया जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी दल आगे आएं और महिलाओं को सम्मान देते हुए ये सुनिश्चित करें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जल्द से जल्द 33% प्रतिनिधित्व मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नीतियों को आकार देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हें इसमें बराबर अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वर्ष 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीबी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए वाजपेयी को असाधारण दूरदर्शी और उत्कृष्ट राजनेता बताया, जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के शब्दों ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया और उनके नेतृत्व ने राष्ट्र को सशक्त बनाया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे देशभक्त राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कल चंबा जिला के तीसा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के लिए लगभग 27.5 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इसमें सगुआ में 25.14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार गुनु घराट से पुखरोटू उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन मुख्य रूप से शामिल है। योजना से 9 पंचायतों के 26 गांवों को लाभ मिलेगा। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। पेयजल ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ पुरानी योजनाओं के पुनर्निर्माण व संवर्धन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि चंबा जैसे दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को मजबूत करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है।
2: पहले ये था कि किसी भी ढंग से लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जाए। 2000 करोड़ रुपए की एक योजना हम बना रहे हैं ताकि एक सही अच्छा पानी लोगों को उपलब्ध हो सके। डलहौजी के में हम पानी पहुंचाने में कामयाब हो गए। 100 करोड़ रुपए की स्कीम से सीवरेज की योजना को हमने बना के तैयार की है।

0: डलहौजी और बटियात की सांझी स्कीमें भी हैं, उन वो भी हम देख रहे हैं।
1: स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में मरीजों की सुविधा के लिए 4 अतिरिक्त पर्ची काउंटर बनाए जाएंगे। सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इससे मरीजों को सुविधा होगी। शांडिल ने कहा कि बंद पड़े पीएसए प्लांट भी जल्द कर्मचारियों को नियुक्त कर इसे सुचारू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कथेड़ में बन रहे बहुउद्देशीय अस्पताल के निर्माण से इस अस्पताल में भीड़ कम होगी, जिसका निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा।
2: और काउंटर हम खोलेंगे और लंबी कतारों को कोशिश करेंगे कि छुट्टी हो जाए। तो से भी बात देखो, आपके पास यहाँ पे सिर्फ 8 या 9 डॉक्टर रखेंगे, 15-16 हमारी नर्सिंग ऑफिस रखेंगे और 20-25 यहाँ पे दूसरे पैरामेडिक्स रखेंगे, बाकी सारा स्टाफ वहाँ होगा, तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। ये बहुत हमने कहा इमीडिएटली सर्च फॉर सूटेबल कैंडिडेट, उसके अलावा तो पीएसए प्लांट भी हम चालू करेंगे इस रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ रिक्वायरमेंट होगी, नए हॉस्पिटल भी होगी, ये भी शीघ्र उनकी नियुक्ति भी करेंगे और पीएसए प्लांट को भी चालू करेंगे।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति जिले में राज्य स्तरीय जनजाति उत्सव के तहत आयोजित दूसरी सांस्कृतिक संध्या में कल हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति और जनजाति परंपराओं की शानदार झलक देखने को मिली। सांस्कृतिक संध्या में लाहौल स्पीति के साथ साथ पांगी, किन्नौर, लद्दाख और प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे कलाकारों ने लोक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। प्रसिद्ध हिमाचली कलाकार अनु शर्मा, फुरबू नेगी, पद्मा डोलकर और अनिल सूर्यवंशी सांस्कृतिक संध्या का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे, जिन्होंने खूब समा बांधा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: कार्यक्रम में लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी उपस्थित रही। सांस्कृतिक संध्या में लाहौल स्पीति के साथ साथ पांगी, किन्नौर, लद्दाख और प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे कलाकारों ने लोक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। कार्यक्रम में जहालमा महिला मंडल, पांगी के कलाकार, किन्नौरी सिस्टर्स, सांस्कर वेली डांस ग्रुप, लद्दाख और किन्नौर के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से खूब तालियां बटोरी। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: जनजातीय जिला किन्नौर में हिमाचल प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत कामगारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना आर्थिक रूप से मददगार साबित हो रही है। योजना के तहत पात्र कामगारों को पक्का मकान बनाने के लिए कुल 150,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किश्तों में प्रदान की जाती है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
4: योजना के तहत पात्र कामगारों को पक्का मकान बनाने के लिए कुल 150,000 रुपए की आर्थिक सहायता 3 किश्तों में प्रदान की जाती है। योजना के तहत मकान निर्माण का कार्य शुरू होने पर पहली किश्त के रूप में 65,000 रुपए, दूसरी किश्त के रूप में 45,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। वहीं मकान का निर्माण पूरा होने पर अंतिम किश्त के रूप में 40,000 रुपए दिए जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए कामगार का हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं, वहीं राज्य के कुछ स्थानों में वर्षा का समाचार है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में 103 सड़कें बंद हैं, जबकि 221 पेयजल योजनाएं और 46 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं राज्य में कल बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों, जबकि 18 अगस्त को कांगड़ा और सिरमौर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले पूर्व में फिजी से शुरू होकर पश्चिम में अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित की गई थी। फिजी स्थित भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुँचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास में तिरंगा फहराने के साथ हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाया गया। रिले में प्रवासी भारतीयों और भारत के मित्रों ने उत्साह के साथ भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी राजनीतिक दलों से मिलकर काम करने का किया आह्वान। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें कर रहा नमन। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चंबा के तीसा में जल शक्ति विभाग के लिए लगभग 27.5 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्य स्तरीय जनजाति उत्सव के तहत हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति और जनजातीय परंपराओं की मिल रही शानदार झलक। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी। कल राज्य के 5 जिलों के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों कहते हैं ना, वक्त और अनुभव बहुत कुछ सिखाता है। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। कार्यक्रम गठबारिंग धर्मशाला इस समय आप सभी इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों वक्त की हम बात करें तो ज्यादा समय अभी हुआ भी नहीं है, और कहते हैं सम्मान सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दिल से होना चाहिए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, कहीं तिरंगा उल्टा फहरा दिया गया तो कहीं हाथों से छूटकर जमीन पर जा गिरा, कहीं उसी तिरंगे से नाक पोंछी गई, कहीं सामान बांधने की थैली बना दी गई, तो कहीं नालों में पड़ा मिला तो कहीं आग में, कहीं बंदे मातरम भी अपने मूल स्वर में नहीं गूंज सका, तो कहीं भोजपुरी गाने बजने लगते राष्ट्रगान की जगह। शायद ये अज्ञानता है, शायद किसी को तिरंगे की मर्यादा का ज्ञान नहीं, मगर जब ऐसी तस्वीरों में जनप्रतिनिधि और बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो दिखाई देने लगे तो सवाल अज्ञानता से आगे बढ़ जाता है। क्या हमें केवल तिरंगा फहराना सिखाया गया है या सम्मान करना भी? तिरंगा केवल तीन रंगों का कपड़ा नहीं, ये उन अनगिनत अधूरे सपनों की निशानी है जिन्हें पूरा करने से पहले ही किसी ने अपने प्राण देश के नाम कर दिए, हमें आजाद हवा में सांस लेने का हक दिया। देशभक्ति केवल तिरंगा फहराने में नहीं है, उसकी मर्यादा सम्मान को बनाए रखने में, निभाने में है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, ये बातें सच्ची हैं या फिर कहने सुनने तक सीमित है? आज़ादी का 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आप सभी ने खूब सेलिब्रेट किया, और सही में उत्साह और जुनून जो होना चाहिए वो वाकई में दिखा भी है। लेकिन दोस्तों क्या वो उसी दिन तक सीमित रह जाता है? सिर्फ हम दिखावे के लिए वो चीज़ें करते हैं या वाकई में उसे बनाए रखने के लिए दिल से उस जज्बे को सलाम करते हैं? ये सवाल हम सभी का खुद से होना चाहिए। तो बिल्कुल हम भी इस आज़ादी के महत्व को उस दिन तक सीमित नहीं रह सकते, हमें हर दिन उस दिन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं। तो इसी पे आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।

दोस्तों उदित नारायण के आवाज में आप सभी ने एंजॉय किया ये देशभक्ति गीत जी दोस्तों। तो सम्मान सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, दिल से होना चाहिए। जब हम देश के प्रति उस सम्मान को दिखाएंगे, तभी हम देश में रहने वाले हर एक इंसान के प्रति सम्मान दिखा पाएंगे। तो यहीं से पता चलता है हमारे अंदर के जुनून का, जज्बे का किस तरह से कायम है और किस तरह से उसे हम आगे तक, आने वाली पीढ़ियों तक बनाए रखना चाहते हैं। जी दोस्तों, तो आज 16 अगस्त का दिन है, बहुत ही खास दिन है। जहां जिस तरह से 15 अगस्त के दिन को आप सभी ने स्पेशल बनाया है, तो 16 अगस्त भी खास है। वैसे तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो हर एक दिन के अपनी एक खासियत, अपनी एक अहमियत उसमें झलकते हुए नजर आएगी। तो 16 अगस्त हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रखर वक्ता, दूरदर्शी राजनेता और संवेदनशील कवि, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी वाणी में ओज था, विचारों में गहराई थी और कविता में संवेदना। वे राजनीति के ऐसे शिखर पुरुष थे जिन्हें केवल उनके समर्थकों ने ही नहीं, बल्कि राजनीतिक मतभेद रखने वाले लोगों ने भी सम्मान दिया। तो दोस्तों, जहां सम्मान की बात आती है, वहां हम किसी भी तरह के भेदभाव से उठकर इंसान होने के नाते आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जब तक हम उस अंधेरे में हैं, एक दूसरे के पीछे चलने की राह के पीछे चल रहे हैं, तब तक ना तो हम किसी और का सम्मान कर पाएंगे और ना ही खुद का सम्मान कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, इन्हीं कुछ खास बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से वापस आते हैं अपनी इन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण सी बातचीत के साथ।

0: तो सो इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बात करें सेलिब्रेशन की। तो सेलिब्रेशन में बहुत सी बातों को ध्यान में भी रखा जाता है, लोगों की मांग जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं उन्हें भी पूरा किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह हमीरपुर जिले के वटसर में हर्षोल्लास के साथ कल जो है वो मनाया गया, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड किया, निरीक्षण किया और भव्य मार्च पास्ट को सलामी ली। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर एवं पुलिस उप अधीक्षक प्रणव चौहान ने किया। दोस्तों, इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसी माह वेतन बकाया के रूप में अतिरिक्त 20,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को इसी माह उनकी पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के बकाया का अतिरिक्त 35% भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी इसी माह उनके पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन बकाया का 15% भुगतान किया जाएगा। इन भुगतानों पर सरकार 281 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगले शैक्षणिक सत्र में प्रदेश भर में 100 नए CBSE स्कूल खोलने की भी घोषणा की। जी दोस्तों, और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि कल के दिन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रही हैं, तो ज़रूर हम उस पर गौर करेंगे, नज़र डालेंगे। लेकिन आइए उससे पहले एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।
1: दिल तो पागल है जी, इसको समझना नामुमकिन।

दोस्तों 91.5 ओमेगा हर्ट्ज पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम। आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके और हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज के दिन के 16 अगस्त बहुत ही खास बहुत ही महत्वपूर्ण हम सभी के ज़िंदगी के लिए। जी दोस्तों आज बात कर रहे हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी वाणी में ओज था विचारों में गहराई थी। वो विचार किस तरह से हमारी जिंदगी को प्रेरित करते हैं हमें प्रेरित करते हैं। दोस्तों एक ऐसा नाम एक व्यक्तित्व और एक ऐसी विरासत जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सदैव याद रखी जाएगी। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। आगे चलकर वे भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हुए। पत्रकारिता से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाले अटल जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में रहे और बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोस्तों वे भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार देश का नेतृत्व कर चुके थे। पहली बार 1996 में फिर 1998 से 1999 तक और उसके बाद 1999 से 2004 तक। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता शायद यही थी कि वे दृढ़ विचारों के व्यक्ति होते हुए भी संवाद और सहमति की राजनीति में विश्वास रखते थे। जी दोस्तों ये कुछ खास बातें जो कि हमें जिंदगी में कुछ बेहतर करने की प्रेरणा देती हैं। दोस्तों नाव और नाविक एक नाव किनारे बंधी रहती थी। उसे लगता था कि नदी में उतरना सबसे बड़ा बोझ है। एक दिन रस्सी खुल गई। बिना नाभिक और बिना दिशा के वे लहरों में भिटकती रही। तब उसे समझ आया कि दिशा देने वाला भार नहीं सहारा होता है। जिम्मेदारियां जीवन को भटकने नहीं देती। तो आइए दोस्तों इन्हीं बातों के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

291 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो इंजन धर्मशाला और आप सभी एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का ये बहुत ही प्यारा सा सफर आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, तो सिर्फ उत्साह और सेलिब्रेशन एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो हम हर दिन जब भी सेलिब्रेट करते हैं तो ये एक मोटिव रहता है, एक उद्देश्य रहता है। तो उस उद्देश्य को हमें भूलना नहीं है, उसे बनाए रखना है। उसे बनाए रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो शायद मुश्किलें कम होती हुई नजर आएंगी। इसी तरह से दोस्तों, हर एक त्यौहार को भी, और अगस्त महीना ही त्योहारों से भरा हुआ है, तो बिल्कुल मस्ती और ढेर सारा प्यार अपनों का अपने साथ लेकर आगे बढ़िए। रिश्तों का प्यार, अपना प्यार, ये खासियत, ये अहमियत हमें समझ आती है जब उस सिचुएशन से हम निकल चुके होते हैं। जब हाथों में होती है सिचुएशन तब संभलती नहीं है, लेकिन हाँ, जब निकल चुकी होती है तब संभालने की कोशिश करते हैं। खैर, शादियों का भी एक सीज़न जो है, दौर जो है, वो चल रहा है। आप सभी इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, साथ ही बरसात का मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, सावन महीना इंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही साथ ढेर सारी मस्ती, क्योंकि आज संडे का दिन है। तो जो भी जॉब करते हैं या स्कूल जाते बच्चे, तो खैर, तो मंडे को तो छुट्टी भी बताई गई है। जो 15 अगस्त को छुट्टी नहीं थी, वो 17 अगस्त स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स में उसे पोस्टपोन किया गया है। तो कल भी उनके लिए छुट्टी है, उनके लिए और मस्ती भरा दिन है। तो दोस्तों, ये पल होते हैं खूबसूरत बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए। तो इन्हें भी हाथ से ऐसे जाने मत दीजिए, और कार्यक्रम में भी हम एक भी पल को ऐसे गवारा नहीं करेंगे। तो आइए इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं और बहुत ही प्यारा सा ये गीत फाल्गुनी पाठक की आवाज में आप सभी ने एंजॉय किया। तो आइए दोस्तों इसी गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके। और आज के दिन हम बहुत ही खास बात जो है वो कर रहे हैं जी दोस्तों, अटल जी की बात करें तो वो जब संसद में बोलते थे तो पक्ष और विपक्ष दोनों ध्यान से सुनते थे। उनके भाषणों में तर्क भी होता था, व्यंग्य भी, गंभीरता भी और एक सहज मानवीय स्पर्श भी। उनकी भाषा कठिन नहीं थी लेकिन प्रभाव बहुत गहरा होता था। वे शब्दों के माध्यम से केवल राजनीति नहीं करते थे बल्कि लोगों से संवाद स्थापित करते थे। शायद यही कारण है कि उन्हें भारतीय संसदीय परंपरा के सबसे प्रभावशाली वक्ताओं में गिना जाता है। दोस्तों आज के दौर में जब संवाद की जगह कई बार केवल बहस दिखाई देती है तो अटल जी का व्यक्तित्व हमें ये सीख देता है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। देखिए दोस्तों कितनी प्यारी सी बात है कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि मन के भेद जब हो जाते हैं तो बहुत से बहुत छोटी सी बात भी एक दम में बिगड़ जाती है और एक छोटी सी बात बिगड़कर इतना बड़ा बवाल ले लेती है कि लोगों में वो अपनापन एकदम से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी केवल राजनेता नहीं थे, वे एक संवेदनशील कवि भी थे। उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, संघर्ष, आशा और जीवन के प्रति अद्भुत विश्वास दिखाई देता है। उनकी रचनाओं का मूल संदेश था कठिनाइयों के सामने कभी हार मत मानो। उनकी प्रसिद्ध कविता की पंक्तियां हैं, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, कि हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ। ये पंक्तियां केवल कविता नहीं दोस्तों बल्कि जीवन का संदेश है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आगे बढ़ते रहने का नाम ही जीवन है। बिल्कुल दोस्तों यही बातें हमें जीवन में प्रेरित करती हैं आगे बढ़ने के लिए। हर एक मनभेद को मिटाकर, आगे हर एक बात को भुलाकर जो है जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका देती हैं। तो आइए हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस प्यारी सी खूबसूरत सी बात के साथ और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

जी दोस्तों, तो देश के प्रति जो है ये जज्बा, ये जुनून, ये आपको इसीलिए जो है याद दिलाया जा रहा है कि सिर्फ ये एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और जरूरी नहीं है दोस्तों कि हमें देश के सम्मान के लिए जो है दूसरों को देखने की ज़रूरत पड़े। हमारे अंदर का जज्बा है, हमारा खुद का जुनून है, इसे कैसे जागृत रखना है, इसे कैसे बनाए रखना है, ये हम बखूबी जानते हैं। तो इस दुनिया की भीड़ के पीछे चलने से बेहतर है कि कुछ बेहतर करके दिखाएं। और जैसे इतिहास जो है आज हमें प्रेरित कर रहा है, इतिहास के पन्नों में जो बहुत ही महान और कह सकते हैं कि प्रेरणादायक लोग आज हमें, हमारे लिए एक प्रेरणादायक स्टोरी बनकर हमारे सामने जो है हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, तो उसी तरह से अगर आप भी इतिहास बनाना चाहते हैं, देश का नाम जो है वो रोशन करना चाहते हैं, गर्व महसूस कराना चाहते हैं, तो ये जो हम जो ये नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो नशा करना है तो इस जज्बे का कीजिए, अपने टैलेंट का कीजिए कि उस टैलेंट को हम एक किस तरह से निखारें, एक किस तरह से अपनी पहचान को बनाएं कि लोग याद करें। दुनिया में रहते हुए तो याद करें ही करें, लेकिन जिस दिन हम इस दुनिया को छोड़ कर जाएं, उस दिन भी लोग हमें अच्छाई के लिए याद करें, ना कि बुराई के लिए याद करें कि ये तो ऐसा इंसान था, अच्छा हुआ चला गया तो बेहतर है, है ना। तो इस बेहतर इंसान हुए हम और इस दुनिया में आए हैं, और ज़िंदगी एक बार मिलती है दोस्तों, बहुत कीमती है, तो इसकी अहमियत को अच्छे से समझा जाए और इसकी वैल्यू की जाए वाकई में, तब हम कह सकते हैं कि वाकई में हमने कुछ कर दिखाया है। तो फिलहाल आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं, क्योंकि ये देश का जज्बा, जुनून जो है ये कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, कभी इसे ख़त्म होने भी नहीं देना चाहिए। तो फिलहाल बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके एक और प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

बिल्कुल दोस्तों, तो हमारे देश को महान बनाता है हमारा व्यवहार, जो हम एक दूसरे के साथ निभाते हैं रिश्तों को, अपनेपन को। और वैसे भी आप सभी जानते हैं दोस्तों, धर्मशाला की बात करें या कांगड़ा की हम बात करें, तो ये धार्मिक प्लेस है। हिमाचल की हम बात करें तो धार्मिक प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग जब घूमने आते हैं तो लोगों का रोज़गार का जो है एक साधन भी होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, वैसे होता नहीं है ऐसा, क्योंकि यहाँ के लोगों में अपनापन बहुत होता है, लेकिन कहते हैं ना, कुछ बीच में अगर एक दो लोगों की वजह से वो चीज़ें सामने आ जाएं तो पूरे प्रदेश का नाम जुड़ जाता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम जुड़ जाता है, पूरे गांव का नाम जुड़ जाता है। तो गांव के नाम के लेकर ही फिर उस बात को फेमस किया जाता है, चाहे हम प्रदेश की करें बात।

या किसी भी तरह से। तो जब भी यहाँ घूमने के लिए लोग आते हैं तो रिस्पेक्टफुली हमें उनको जो है मतलब कि गाइड करना चाहिए, गलत गाइड हम नहीं करें किसी को भी, जिससे कि वो दोबारा यहाँ आए ना और दूसरा कि कहीं बाहर जाके वो एक गलत जो है मैसेज जो है हमारे यहाँ से ना जाए, है ना। सबसे मेन बात यही होती है। तो ये जो हमारा व्यवहार होता है ये हमारे देश को भी महान बनाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है इसमें, वैसे तो खैर अपने अपने रोल के हिसाब से हर कोई बेहतर करता है, हर कोई अपनी अपनी फील्ड पर बेहतर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हम इंसान होने के नाते अक्सर इंसानियत भूल जाते हैं। हम लोगों के साथ बाहर की बात क्यों करें, हम आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के साथ वो मनभेद रख कर जब चलते हैं तो बहुत सी बातें जो हैं वो सामने आती हैं। तो ये व्यवहार ही अगर हम सुधार लें तो इसे भी हम देशभक्ति का नाम दे सकते हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि हमें आर्मी में जाकर ही देशभक्ति का जज्बा जो है वो जगाना है। ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ बेहतर जो है करके, हम अपने आप को भी सुधार लें, अपने आप के बिहेवियर को भी सुधार लें, जिससे कि एक सही चीज़ें जो हैं वो बाहर तक जाएं, सही मैसेज जो है वो बाहर तक जाएं, तो उससे भी बेहतर बनाया जा सकता है। फिर चाहे वो अपने देश की बात हो, चाहे अपने गांव की बात हो, चाहे अपने प्रदेश की बात हो, एक इंसान से जब लोग जुड़ते हैं तो वो गांव बनता है, समाज बनता है, और गांव जब जुड़ते हैं तो जब वो है डिस्ट्रिक्ट बनता है, तो उसी से जुड़ जुड़ कर जो है चीज़ें आगे आगे जाती हैं। तो जब हम आपस में ही एक अपनेपन के साथ नहीं रहेंगे, मेल मिलाप के साथ नहीं रहेंगे, तो हम बाहर वालों से कैसे लड़ सकेंगे, कैसे हम अपनी मजबूती जो है बाहर कायम रख पाएंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से मैसेजेस होते हैं जो कि हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं, बेहतर जागरूक इंसान बनाते हैं। तो आइए इन्हीं कुछ बातों के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और इस छोटे से अंतराल से पहले आप सभी ने बहुत ही प्यारा सा गीत इंजॉय किया। आपको पहले भी कहीं देखा है मूवी का गीत दोस्तों, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ों के साथ जी दोस्तों। और बहुत ही इन खास बातों के साथ जो है हमारे एक लिसनर हैं जो कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, जो कि मतलब बहुत चीज़ों को समझते भी हैं, जानते भी हैं, और ख़ास करके रेडियो गुंजन की हम बात करें तो वो प्रोग्राम्स को बहुत ही अच्छे से सुनते भी हैं। तो आइए उनसे बात जो है हम ज़रूर करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। हेलो
1: हेलो नमस्कार जी।
0: हेलो
1: हेलो गुड मॉर्निंग जी।
0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार जी, आ रही है
0: जी जी जी जी। स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद जी
0: जी। तो कैसे हैं मैम आप?
1: बढ़िया बढ़िया जी, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं
0: जी। तो कैसा रहा कल का दिन आपका, खास करके 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आपने सेलिब्रेट किया
1: जी? बिल्कुल, मोदी के रिगार्डिंग आपसे एक बात करना चाहती थी
0: जी।
1: जैसे अभी आपने भी करी इस गाने से पहले बात
0: जी,
1: कि ये को आज़ादी तो हम एक दिन के लिए नहीं होती आज़ादी तो हम, पर ये है कि आज़ादी है क्या? जैसे उन हमारे जो जैसे महात्मा गांधी जी थे या सुभाष चंद्र बोस जो भी थे हमारे, उन्होंने तो चलो हमें आज़ादी दिलाई, लेकिन क्या आजकल जो हो रहा है रोज का रोज हम जो सुनते हैं, क्या वाकई में हम आज़ाद हैं
0: जी? बिल्कुल,
1: ये सोचने वाली बात है। जैसे आए दिन आप देखो आए दिन बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, या फिर लोग एक दूसरे को कभी अपने बच्चों को पानी में फेंक रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, आए दिन रोज कोई ना कोई ऐसी न्यूज आती है। तो लोग, मैं ये सोचती कि लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है और हम किस वे में जा रहे हैं
0: जी। बिल्कुल, पहले ये होता था ना कि हमें अपने देश से अलग दूसरे लोगों से डर होता था, लेकिन अब जो है हम अपने घर पे भी कई बार सेफ नहीं होते, ऐसा महसूस होता है
1: जी। बस यही मैं बोलना चाहती कि जैसे पहले हमने अंग्रेजों से तो हमें उन्होंने आज़ाद करा दिया, लेकिन आज जो है हम खुद से एक दूसरे से डरे हैं
0: जी। बिल्कुल,
1: तो ये मतलब ये जो हमारा समाज है ना, ये बड़ा गलत वे में जा रहा है। तो मैं यही बोलना चाहती कि जैसे हमारे बच्चे हैं, तो जैसे कल 15 अगस्त था, तो जरूरी नहीं कल आज जैसे है, तो आज भी एक मतलब प्रे कर सकते हैं कि आगे से हम कोई ऐसा नहीं करेंगे कोई भी काम, कि हम किसी के लिए गंदी नजर नहीं रखेंगे, किसी के लिए गंदी सोच नहीं रखेंगे, या फिर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अगर करना है कुछ अच्छा करो
0: जी।
1: तो मैं बस ये छोटा सा मैसेज देना चाहती कि अगर हम ठान लेना तो ये बड़ा कुछ हो जाता है, और हम आप यही सब चीज़ें अगर स्कूलों में समझाएं, अपने बच्चों को समझाएं, तो शायद काफ़ी तक हद तक ये हमारा समाज जो है तो सुधर सकता है आने वाले टाइम में
0: जी।
1: तो ये अगर ये हिसाब रहा तो बहुत काम खराब रहे। तो
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने मैम, क्योंकि अक्सर हम बाकी लोगों को तो एडवाइस दे देते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकना या अपने घर में अपने आसपास चीज़ें देखना यही भूल जाते हैं।
1: हाँ जी,
0: तो उसी के चलते
1: जब भी कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो टारगेट किसको बनाते हैं, लड़कियों के
0: जी।
1: लड़कियों को बनाते हैं कि इसको, और फिर अगर लड़कियों की बात ना हो तो फिर उनकी माँ पर आ जाती है बात की उनकी माँ ने ध्यान नहीं रखा या ये वो, मतलब बड़ा कुछ मतलब घूम फिर के बात जो होती है वो एक औरत पर आ जाती है। लेकिन मैं तो यही बोलूंगी कि हर औरत को कि पहले सबसे पहले अपने बच्चों को समझाएं
0: जी जी,
1: अगर उनको ढंग से मोटिवेट करेंगे शुरू से तो आगे के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। और ऐसा नहीं है कि हमारे युवा सारे खराब हैं, कुछ ऐसे युवा भी हैं, देखो कितना हौसला दिखाया, अगर जैसे इसमें जंतर मंतर में कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी थे वहाँ पर
0: जी जी जी,
1: तो कितना उन्होंने हिम्मत दिखाई है। वहाँ से हमें ये भी लगता है कि कल को हमारे पर कोई आँच आए, हमारे देश पर या हम पर कोई आँच आए, तो हमारे लिए ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, वो हैं हमारे लिए मतलब बैठे हैं
0: जी
1: हमारे साथ, तो ऐसा भी नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ जो है वो जिनकी मानसिकता जो है बिल्कुल डगमगा गई है, और ज़्यादातर ये ना फोनों की वजह से आई, जो
0: मेन बात तो बिल्कुल मैम मानसिकता की ही है हमारी
1: जी
0: जी।
1: जी बस यही कहना चाहती थी कि जैसे अभी तक जो छोटे बच्चे हैं उनको तो संभाले जा, बड़े हैं वो भी, बच्चों को खुद पर हावी ना होने दें, बच्चों को अपने माँ बाप मत बनाएं, लेकिन बच्चों को बच्चे रहने दो। और बच्चों को भी होना चाहिए कि अपने माँ बाप के माँ बाप ना बने, बल्कि बच्चे हैं तो बच्चे बन के रहें।
0: जी, बिल्कुल
1: बस इतना बोलना चाहती थी,
0: जी
1: थैंक यू।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाते जाते वैसे तो आप कुछ लोग जानते ही होंगे, लेकिन हाँ एक बार अपना नाम और आप कहाँ से बात कर रहे हैं वो भी बता दीजिए।
1: मैं इंदु सिद्धवाड़ी से।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका प्यार जो है हमारे रेडियो के साथ बहुत ही अच्छा और बहुत ही लंबे समय से बना हुआ है, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद हैं, मतलब धन्यवादी हैं आपके।
1: हम भी आपके बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतने अच्छे अच्छे अच्छी न्यूज़ सुनाते हैं, गाने सुनाते हैं, सारी तरीके से जानकारी, तो मोटिवेट करते हैं, हमें जानकारियाँ देते हैं बड़ी अच्छी अच्छी
0: जी
1: उसके लिए
0: मैम,
1: तो मैं तो बोलती हूँ कि आप तो सुबह से शाम तक होते हैं, उसके लिए आप सभी का अनाउंसर का बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी मैम,
1: जी।
0: कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।

बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुतो 91.2 ओमेगा हर्ट्स पर, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, सिर पे लाठियां कल भी थी और सिर पे लाठियां आज भी हैं। इस स्वतंत्र भारत की नदियों में गुलामी का दरिया आज भी है। तुम भूल गए बलिदानों को, उन देशभक्तों के नामों को, जो तुम्हें मिला वो मुफ्त मिला। तुम मत भूलो उनके एहसानों को, वो भगत सिंह, आजाद, अशफाक और राजगुरु सब एक हुए। ब्रिटिश कांपा, फिर क्रांति का आगाज शुरू। वो बंदूक, तोप, लाठी, फांसी ना रोक सकी उन जावाजों को, वो इनकलाब के नारों को और स्वतंत्रता की आवाजों को। वो आज़ादी के शाम नहीं, बस एक गुलामी के युग का अंत हुआ। सदियों तक संघर्ष किया जब तक भारत स्वतंत्र हुआ। इस आज़ादी की आंधी की तुम शांत कभी मत होने देना। उठो, जागो, संघर्ष करो, फिर से भारत को गुलाम मत होने देना। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारे से देशभक्ति गीत की ओर।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं और बिल्कुल दोस्तों मनोरंजन और बातचीत के साथ साथ जानकारियां भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो स्वतंत्रता दिवस तो आप सभी ने सेलिब्रेट किया, लेकिन हाँ उस अवसर पर, उस महत्वपूर्ण अवसर पर जो घोषणाएं लोगों के लिए की गई हैं वो जानना भी हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। नहीं तो हम हर सुविधा से दूर रह जाएंगे और हम जान भी नहीं पाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों आइए बढ़ते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार की बजटीय प्रतिबद्धता के अनुरूप एनएचएम हिमाचल प्रदेश के तहत कार्यरत लगभग 9000 आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मासिक प्रोत्साहन को 5800 रुपए से बढ़ाकर 6800 रुपए किया जाएगा। उन्होंने इस वृद्धि को लागू करने की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि एनएचएम हिमाचल प्रदेश के तहत कार्यरत वे कर्मचारी जिन्होंने अपने वेतन के युक्तिकरण के बाद 7 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें 1 अप्रैल 2026 से संशोधित वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार की बजटीय प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए उन्होंने एनएचएम हिमाचल प्रदेश के तहत कार्यरत आउटसोर्स स्टाफ नर्सों, फार्मासिस्टों, ऑपरेशन थिएटर सहायकों और प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह तथा डेटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए 18,000 रुपये प्रतिमाह संशोधित पारिश्रमिक की घोषणा की। संशोधित पारिश्रमिक 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा। उन्होंने जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4000 पद भरने की भी घोषणा की। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारियां आप सभी के लिए, आप सभी तक पहुंचाई गई हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को मनोरंजन की ओर। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया। और बिल्कुल दोस्तों, सिचुएशन और माहौल के हिसाब से हर एक चीज़ की अपनी एक खास अहमियत है। तो मेहंदी की हम बात करें तो दोस्तों, कुछ शादी की खुशी में मेहंदी लगा रहे हैं, तो कुछ तीज त्यौहार की खुशी में मेहंदी लगा रहे हैं, तो कुछ मायके आने की खुशी में जो है मेहंदी लगा रहे हैं, तो वहीं कुछ जो है वो सावन के महीने को खूबसूरत बनाने के, इस माहौल को और ज़्यादा प्यारा बनाने के लिए। तो हर किसी का अपना अपना नज़रिया, अपनी अपनी तरीके से जो है खुशी को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप क्यों पीछे रह रहे हैं? बिल्कुल दोस्तों, आप सभी भी तो एंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। दोस्तों तो आइए इसी खुशी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आके। और कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज बहुत ही खास, 16 अगस्त 2026 का दिन है और आज हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो आइए दोस्तों फिर से नजर डालते हैं उनके जिंदगी की ओर। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय लोकतंत्र की शक्ति में विश्वास करते थे। उनके राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमेशा दिखाई दी। सत्ता उनके लिए अंतिम लक्ष्य नहीं थी, सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, संवाद और लोकतांत्रिक परंपराओं को महत्व देना उनके व्यक्तित्व की पहचान रही। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं आज के समय में, तो अटल जी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि लोकतंत्र केवल सरकार बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि विचारों को सुनने और सम्मान देने की संस्कृति भी है। दोस्तों वर्ष 2015 की बात करें तो 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनके लंबे सार्वजनिक जीवन, भारतीय राजनीति में योगदान और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं का सम्मान था। उनका जन्मदिन 25 दिसंबर भारत में सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अटल जी के व्यक्तित्व की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? थोड़ा उनकी जिंदगी के बारे में जाइए, मतलब जानने की ओर जाइए, फिर देखिए बहुत कुछ सीखने लायक होगा। दोस्तों आज की युवा पीढ़ी के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन अनेक प्रेरणाएं देता है। अपनी बात प्रभावी ढंग से कैसे कहें, लेकिन दूसरों की बात सुनना भी सीखें, ये बहुत अहम बात है। दोस्तों कई बार बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं हमें जो अपनी बात कह तो देते हैं, लेकिन जब सुनने की बात आती है तो उनसे सुना नहीं जाता। फिर चाहे वो डांट हो, चाहे वो समझाने की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, तो ज़िंदगी में ऐसे भी बहुत से लोग मिलेंगे। लेकिन आज हमने कार्यक्रम में बहुत ही प्रेरणादायक बात की है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन की, तो उनकी ये खासियत रही है कुछ बहुत ही अहम सी। तो आइए दोस्तों इसी बात पे एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक।

जी दोस्तों, तो ये जो जज्बा है, ये जुनून पहले के समय से रिलेटेड है, लेकिन ये आज भी इसी तरह से बना रहे और आगे भी इसी तरह से बना रहे, ये कोशिश हम सभी को करनी है, क्योंकि देश का सम्मान हमारा सम्मान। बिल्कुल, तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

तो दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की, फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत, नए उत्साह और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के हाथ में चांदी के रंग से चटनी चटा
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं खाई।
2: ओके ओके मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई, मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी?
9: अपनी वो कोने वाली मेज पे,
10: दीवार पे लगाने वाला ना है टीवी।
11: टीवी देखने बुलाएंगे?
12: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
13: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
12: क्यों?
13: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
14: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बता ही दो, एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा?
18: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
17: मैं तो बुरी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ा
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं खाई।
2: ओके ओके मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई, मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी?
9: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
10: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
11: टीवी देखने बुलाएंगे?
12: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।
13: बुलाओगे ना शुक्ला जी?
14: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
13: क्यों?
14: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए।
15: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
16: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
18: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
19: मैं तो बुरी।

0: 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला में आप सभी का स्वागत है और ये है एक स्पेशल कार्यक्रम और हमारे स्टूडियो में भी स्पेशल मेहमान जो हैं वो पधार चुके हैं, जिनकी की बात हमसे चल रही थी काफी महीनों से, 2-3 महीनों से हम कह रहे थे कि आ जाइए। पहले मैडम ने कहा मैं आना चाहती हूँ, हमें बुलाइए। बाद में जब हमने सोचा कि बुलाते हैं तो बहुत कुछ होता है इस तरह से। फाइनली आज हमारे स्टूडियो में पधार चुकी हैं, लेकिन किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं इन्हें, सुनीता डोगरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, शुक्रिया जो सद्या।
0: और इंस्टा पे आप सभी जानते हैं इनका नाम टीटू है, इट्स टीटू करके हैं। तो टीटू जी, आज हम ऐसी बहुत सारी बातें करने वाले हैं कार्यक्रम में, जो कि शायद बाहर लोगों को नहीं पता है आपकी लाइफ के बारे में। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे। सोशल मीडिया पर तो आप हैं, सभी जानते हैं, सभी देखते भी हैं आपको, लेकिन उससे पहले की तरफ हम चलते हैं। पहले की जिंदगी कैसी थी?
1: अच्छा, मतलब जब शादी हुई तो उसके बाद फिर फैमिली में ही टाइम हो जाता था, बच्चे थे, सास ससुर थे, तो टाइम मिलता नहीं था। 2013 में शायद मेरी बेटी ने मेरे को फेसबुक पर डाउनलोड किया कि मम्मा आप फोटोज वगैरह इसमें डाला करो, ये नई आई हुई है ऐप, बोला तो आप भी इसमें डाला करो। उसमें फिर फोटोज वगैरह डालती रहती थी। तो थोड़े टाइम के बाद फिर इंस्टाग्राम आ गया, तो वो सारे ये इंस्टाग्राम पे लगे होते थे। तो मैंने बोला कि भाई ये क्या है, बोला ये भी एक ऐप है पर इसमें जो यंग जो भी हैं वो फेसबुक यूज नहीं करते हैं और ये करते हैं इंस्टाग्राम पे सारे, भाई मेरा बना दे। तो मेरी बेटी ने ही मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना दिया। जब वहां पे बनाया तो फिर एक मैंने बोला कि मुझे शौक था कि मतलब हीरोइन की तरह हम भी वीडियोस बनाए या जैसे वो गाते हैं ये करते हैं, तो वो करने के लिए फिर मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे वहाँ फोटोज डालती थी, वो मेरा प्राइवेट था फेसबुक, और इंस्टाग्राम पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हम ओपन रखा हुआ था मैंने, और वहाँ मैं गाने वाने डाल के इंस्टाग्राम पे बनाती थी।
0: तो इंस्टाग्राम से फॉलोअर्स मिल गए थे आसानी से?
1: ना, बहुत मेहनत करनी पड़ी मेरे को। बहुत मेहनत करनी पड़ी
0: क्योंकि वहाँ पे न्यू जनरेशन
1: है, वो आपको ऐसे ही फॉलो नहीं करेगी ना, क्योंकि हम तो बस ये है कि गाना जो अच्छे लगते थे पुराने गाने उस पे एक्ट कर लिया डाल दी, तो वो क्यों लोगों को पसंद आएगा, है ना। कुछ हटके जब आप करते हो ना तब आप सबकी नजर में जाते हो। तो जब मैं उस पे बनाती थी रील, तो मेरी फ्रेंड आपको पता है रानी है, तो वो मेरे को बोलती थी कि हाय दीदी आप कब वायरल हो गई, इतनी लेडीज हैं उनको इतने मतलब वो लाइक मिलते हैं, उनकी व्यूज इतने अच्छे होते हैं, आप इतनी अच्छी बनाते हो आपको क्यों नहीं मिलते हैं। तो वो उसने मेरे को बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट किया और सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करती थी वो कि आप आगे बढ़ो और कोई बात नहीं, आज नहीं कल नहीं होगा आपका। तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे मतलब लगी, पर बहुत टाइम लगा,
0: बहुत टाइम लगा। सोशल मीडिया की कोई जानकारी वैसे नहीं थी आपको?
1: ना,
0: जैसे
1: ना।
0: कुछ रील्स तो हैं जिसमें एडिटिंग वगैरह भी करनी पड़ती है शायद, तो वो सब भी बाद में आपने
1: वो सब बाद में हाँ जी।
0: तो पहले आप बस रॉ करती थी और रॉ ही डाल देती थी जैसा करा और वैसे
1: मैं वैसे ही डाल दिया। हाँ, कोई अभी तक भी मेरे को बहुत ज्यादा फंक्शन नहीं है पता इनके कि लोगों को तो एडिटिंग है ना बहुत अच्छी सी कर लेते हैं, उतनी मैं कर नहीं पाती हूँ, मेरे को लगता है कि जितनी मैं करती हूँ उतनी सही है।
0: ठीक है, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, एक गीत जो आपकी पसंद का हो।
1: अच्छा,
0: श्रोताओं को सुनवाएं।
1: आप लता मंगेशकर का चला दीजिए गाना कोई, मेरे को सारे गाने अच्छे लगते हैं उनके, रोमांटिक होना चाहिए, मेरे को सैड सॉन्ग पसंद नहीं है। इसलिए कोई भी आप उनका गाना चला सकते हैं।
0: ठीक है।

0: इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। और आज की हमारी मेहमान हैं सुनीता डोगरा जी, इट्स T2। सोशल मीडिया के बारे में हमने से पहले के बारे में हमने बात कर ली है आपसे। अब हम ये जानेंगे कि आपने कहा कि बहुत समय लग गया, ये क्लिक कब हुआ, कब ऐसा लगा आपको कि अब जो है ये मतलब फेमस हो रही हैं आप?
1: फेमस तो देखिए, अब मेरा एक स्पेशल है चोटी पिंजा। वो ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा होगा जो चोटी पिंजा को नहीं जानता होगा। कने मैं सच्ची गला था, मिंजो चोटी पिंजा ही फेमस किता। चोटी पिंजा जी जी मेरी पोस्टर पर होना लगे। कने मैं तेरा यो मतलब गुस्से ने सा, मतलब ऐसे लगता ना कि यार हम तो वीडियो बना रहे हैं आराम से और बीच में आप कुछ गलत वलत जो भी कमेंट करे जा रहे हो। तो जैसे ही मैंने उनकी वीडियो बनाना शुरू करी तो मेरे को जो आज यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है वो है चोटी पिंजे।
0: चोटी पिंजे, हाँ। दोस्तों श्रोताओं, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, वैसे तो टीटू जी जो हैं वो कांगड़ी भाषा में अपनी रील्स लेकर आती हैं, ज्यादातर ये कंफर्टेबल उसी भाषा में है। लेकिन हम ये चाह रहे थे क्योंकि देश विदेश तक भी देखते हैं लोग आपको और अच्छा लगता है उन्हें, लेकिन शायद हो सकता है कि ज्यादा समझ नहीं पाते होंगे। शायद आप पर भी ये कमेंट्स आते हैं
1: कि मतलब आप जो बोलते हो वो हमें अच्छा लगता है, मतलब पहाड़ी भाषा है आपकी, पर हमें बहुत सारी चीजें जो आपकी वो समझ नहीं आती, क्योंकि ऐसे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं बाहर के भी हैं जिनको पहाड़ी भाषा आती नहीं है।
0: तो ये दो भाषाएं इंग्लिश और हिंदी जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है।
1: हाँ,
0: तो मुझे लगा कि इसी लैंग्वेज में हम बात करते हैं। बीच में आप कभी कंफर्टेबल हो अपने जोनर में आ
1: जाएंगे, तो पहाड़ी तो मेरे अपने आप बाहर निकल दी सा था, बीच बिचाई आनी हिंदी में तो मैं बोलना नहीं, लेकिन पहाड़ी का तो पता रग रग जो बस ही हो। अब एक चीज मैं और इसमें ऐड एक करूंगी, सोशल मीडिया में आपको बताती हूँ कि जब मैं मतलब इंस्टाग्राम पे जब मैं मतलब काम करते थे तो हमारा एक मतलब ग्रुप टाइप बन गया था फ्रेंड्स का। बहुत अच्छे अच्छे मेरे फ्रेंड थे जो आज तक मेरे साथ, कुछ चले गए लेकिन आज तक जो मेरे साथ थे उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उनमें जैसे अजय हैं, फिर रानी हैं, फिर मेरी फ्रेंड है जो चंबा से हैं, अन्नू गौतम है, शैलजा और एक नाम और है इंदु। ये आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जब भी मेरे को गलत कमेंट आते थे तो ये सारे मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। हमारी एक स्क्वायर टाइप बन गई थी कि अगर दीदी को किसी ने कमेंट किया तो ये वहां जाके ना उसके कमेंट के नीचे उनकी ऐसी बैंड बजाते थे कि वो उसको कमेंट डिलीट करना पड़ता। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा आपके माध्यम से करना चाहूंगी कि वो मेरे साथ आज तक हैं और मेरे को उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है।
0: यही पहचान होती है एक सफल व्यक्तित्व की, कि वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को कभी नहीं भूलता है। तो मुझे लगता है आपका शुक्रिया उन तक पहुंच ही गया होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे हम आपने बात की ना चोटी पिंजा इनकी, आखिर चोटी पिंजा ये है क्या, वर्ड कहाँ से पकड़ लिया आपने?
1: ये क्वेश्चन तो मेरे को शायद दिन में 10 बार आता है जो कमेंट करते हैं। मैम बाकी छड़ा थोड़ा ये दसा कि चोटी पिंजा क्या होंगे, चोटी पिंजा क्या होंगे, थोड़ा चल यहाँ इस गूगल पर सर्च कर देता चोटी पिंजा करते थोड़ा दी रील आई आंदी थी। तो बोले
0: मैं बताऊँ, अब अगर मैं उसको विजुलाइज करना चाहूँ ना तो जैसे मैं अपने तरीके से सोचती हूँ, सभी लोग अपने अपने तरीके से उसको विजुलाइज करते होंगे, इमेजिन करते होंगे।
1: अच्छा है उसकी मतलब चोटी है ऐसे लंबी सी है और ऐसे आगे भी है कलगी टाइप है, तो उसको चोटी पिंजा बोलते थे। मैं जहाँ जाती हूँ ना तो मेरे को सब ये बोलते हैं कि चोटी चोटी पिंजा नहीं आया आजकल, मैम चोटी पिंजे रील नहीं बना दे। तो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मेरे को ये बोलता है, पीठ पीछे शायद बोलते होंगे लेकिन मेरे सामने मेरे को सब चोटी पिंजे वाली रील्स को जो ज्यादा ढूंढते हैं कि मैम बना रहे हो चोटी पिंजे वाली। तो मतलब कि मैं उससे फेमस हुई हूँ और लोगों को पसंद आता है मेरा चोटी पिंजा स्पेशलिस्ट, मेरी बायो में नाम लिख चुका है अब कि उन्होंने ही मुझे फेमस किया है।
0: यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहती हूँ कि देखिए कई लोग जो है ना वो उनको चाहे जितना मर्जी हंसा लो, मजाक में कर लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन वो सीरियस ही रहते हैं। तो ये भी कहते हैं कि जब आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन पॉजिटिव भी उठाती हैं आप, ऐसी बात नहीं है कि पॉजिटिव नहीं रहती हैं, हमने देखा है आपके।
1: थैंक यू, मैं थैंक यू मैसेज जो भी होते हैं मैं उनको इस तरह से करती हूँ कि उनके मैसेज उठा के और उनकी फोटो लगा के उनको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने इतने अच्छा, है ना।
0: वो तो
1: चलो उनके मतलब मेरे को लगता है कि वो हैं तो हम हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, फॉलोअर्स हैं तो हम हैं, उन्होंने ही फॉलो किया, उन्होंने ही हमें मतलब पुश किया है कि हाँ जी नहीं बनाओ, तो मैं उनका भी थैंक यू मतलब रोज करती रहती हूँ।
0: लेकिन नेगेटिव वालों को आप ऐसे रगड़ती हैं, इसकी वजह से जरूरत लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव भी आएंगे नेगेटिव भी आएंगे, तो नेगेटिव को भी आप एक मतलब अच्छे वे से लीजिए।
1: मतलब देखो उनको भी मैं कोई गालियां नहीं देती हूँ, गाली देना नहीं अच्छी चीज नहीं है ये तो हमें पता है, पर मैं जो भी बोलती हूँ वो मैं घर पे अपने बच्चों को भी वैसे ही डांटती हूँ, वैसे ही बोलती हूँ, तो सेम मेरा वही होता है कि तुम मार तेरे मुंह चंड तेरा तो। लेकिन हम क्या है कि नॉर्मल तो ये चीजें जो है ये पता नहीं लोगों को पसंद आने लगी हैं कि आप जिस तरह से बोलते हो वो अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं चोटी पिंजों का इलाज इसी तरह से करती हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा गंदी गालियां देनी भी नहीं आती और मैं देना भी नहीं चाहती।
0: चलिए एक गीत और हो जाए। हाँ
1: हाँ जी
0: बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
1: अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं।
0: वाह बाकी
1: ये मेरा फेवरेट है।
0: अभी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी हमें भी सांस लेने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है, जब तक आपसे बात होती रहेगी ना हमें बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि सांस कैसे आ रही कैसे जा रही। चलिए

0: बहुत ही खूबसूरत गीत। और इस गीत के बाद फिर से आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर भी। टॉपिक तो खैर खास कोई है नहीं, क्योंकि सुनीता डोगरा जी का कोई नीश भी नहीं है। नीश यानी कि वो होता है जिस पर कि हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं। सुनीता जी, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि अगर आप टीचिंग की वीडियो बना रहे हो तो वही बनाओ, या अगर आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो तो आप वही करो, लेकिन आपके प्रोफाइल में तो हमने देखा कि सब कुछ ही है और सब कुछ चल रहा है।
1: ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टैग थोड़े लगाना है कि अगर आप जो एक ही बना रहे हो वो आपको जो अच्छा लगता है। मैं तो सारी लेडीज को बस यही बोलना चाहती हूँ कि अपने लिए जियो, अपने लिए भी टाइम निकालो, क्योंकि आपकी भी जिंदगी है। एक सारी जिंदगी आपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, उनको सारा टाइम दिया ना आपने। अब एक वक्त जब आता है तो आपको लगता है कि नहीं यार, हमें अपने लिए भी जीना। तो आप अपने लिए जियो और जो आपको अच्छा लगता है वैसी वीडियो बनाओ। ये नहीं है कि आपने एक ही चीज बनानी है कि अगर आप खाने की बना रहे हो तो खाने की बनाओ। नहीं, अगर आपको कोई अच्छा लगता है, आप कोई संदेश देना चाहते हो, आप मतलब कोई पब्लिक को जगाना, जैसे मैं हर तरह की वीडियो बनाती हूँ
0: जी हाँ।
1: जहाँ कहीं समाज में कुछ गलत हो रहा होता है लड़कियों पे। जैसे आजकल आप देख रहे हो कितने मतलब कितनी वीडियो आ रही है जो गलत हो रहा है, मैं उस पर भी आवाज उठाती हूँ। कोई गलत करता है उस पर भी आवाज उठाती हूँ, वो भी वीडियो बनाती हूँ। खाने की भी बनाती हूँ, घूमने की बनाती हूँ। डांस मेरा मतलब पैशन है,
0: जी
1: डांस मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं दो टेक कभी नहीं लेती हूँ, एक में जो बन गया वो बन गया और वो मैं पोस्ट कर देती हूँ, लोगों को पसंद आती है। तो ये नहीं है कि एक ही तरह से आपने अपने आप को बांधना है, जो आपको
0: जी
1: अच्छा लगता है वैसा करें।
0: चलिए, आप तो कर रही हैं काम, लेकिन आपको देख करके ना, जैसे अभी आपने कहा कि मैं चाहती हूँ कि और लेडीज भी करें, वो तो करना चाहती हैं और वो करना शुरू भी कर रही हैं, लेकिन उनके जो घर के लोग हैं ना, वो आपसे ऑफेंड हो गए हैं, मतलब आपसे नाराज हैं कि आप उनकी घर की जो महिलाएं हैं उन्हें
1: बिगाड़ रही है, बिगाड़
0: इंस्पायर
1: रही है उनको। अच्छा
0: हाँ, और शायद उनके, क्योंकि उन्हें तो अभी ये नहीं पता है कि रील कैसी बनानी है, क्या करना है, तो बहुत समय लग जाता है ढूंढने के लिए, देखने के लिए कि कैसे कैसे काम करना
1: अब
0: है
1: मैं
0: ना।
1: इस पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपकी फैमिली की सपोर्ट होना
0: बिल्कुल
1: सबसे
0: जरूरी है।
1: जरूरी है।
0: हाँ जी।
1: मेरे हस्बैंड, उन्होंने आज तक मेरे को मतलब किसी चीज के लिए नहीं रोका, नहीं टोका, नहीं कि तू रील्स मत बना, या तू ऐसे क्यों कर रही है, या तू चोटी पींजे वाली वीडियोस मत बनाया कर, लोग पता नहीं कौन कब कहाँ मिल जाएगा और कुछ गलत हो जाए। उन्होंने कभी नहीं मेरे को इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा सपोर्ट उनकी, बच्चे मेरे और मेरी फैमिली सारी, सबने मुझे इस चीज में सपोर्ट किया है, तो ही मैं आगे बढ़ पाई हूँ। अदरवाइज देखो, अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो उनकी सोच है। वो आजकल दुनिया कहाँ पहुंच गई है यार, औरतों को भी जीने का हक है, उनको भी जीने का राइट दो, जो उनको अच्छा लगता है उनको करने दो, बशर्ते कि
0: वो
1: वो
0: सही,
1: गलत ना करें, है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: हाँ जी।
1: सोशल मीडिया के इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, गलत भी हैं और अच्छे भी हैं। आपको रास्ता चुनना है कि आपने किस तरफ जाना है। गलत भी है, मैं बोल रही हूँ ना कि सोशल मीडिया पे क्या हो गया, पहले

0: कनेक्टिविटी नहीं थी आपकी लोगों तक पहुंचने की। अब ये चीज क्या हो गई, बहुत इजी हो गया है। व्हाट्सएप तो छोड़ दो, फेसबुक पे मैसेंजर, स्नैपचैट पे मैसेंजर, इंस्टा पे, तो इजीली आप एक दूसरे से कनेक्ट हो
1: कनेक्ट कर
0: जाते हो।
1: लेते
0: कहां
1: हैं।
0: लेडीज गलत हो जाती
1: हम भी
0: हैं,
1: ऐसे ही कनेक्ट हुए
0: है ना। हाँ,
1: थे।
0: पर अच्छे अच्छे वे में हुए ना। मेरे को बहुत सारे फॉलोअर्स मिले हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेरे को फेसबुक पे बहुत ज्यादा अच्छे मिले हैं मुझे। अब मैं नाम लूंगी तो शायद आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा कि मेरे को इतने अच्छे अच्छे लोग मिले
1: हाँ
0: हैं,
1: जी
0: बहुत
1: बिल्कुल।
0: प्यार करते हैं मेरे को, सारे बहुत प्यार करते हैं।
1: चलिए इसी बात पर एक और गीत हो जाए।
0: अब किशोर कुमार का गाना है एक, कि जचता ही नहीं आंखों में कोई।
1: चलिए, हमारी लाइब्रेरी में होगा तो हम जरूर आपकी फरमाइश पूरी करते हैं।

0: खूबसूरत संगीत आप सभी ने सुना सुनीता डोगरा जी की फरमाइश से। जी हाँ, आज हमारी मेहमान है सुनीता डोगरा जी और 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम। सुनीता जी, अब हम बात तो क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया की जब बात हो रही है तो बात AI की भी होगी, लेकिन अब इसमें ना मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अब हमें ये समझ में आ रहा है कि AI को चलाने के लिए पानी बहुत ज्यादा लग रहा है।
1: हाँ जी,
0: है ना, तो क्या आप भी AI का यूज कर रही हैं?
1: देखिए, AI का यूज मतलब एक अच्छे, मतलब जिस तरह भी आप ले लो, एक हेलो भी अगर आप लिख रहे हो ना AI की हेल्प से, तो उसमें पानी वेस्ट होगा ही होगा। मैंने वीडियोस भी बनाई, मैं लोगों को अवेयर भी कर रही हूँ कि AI का कम से कम आप जो है वो इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि जब आप एक फोटो जनरेट करते हैं ना आप उससे, तो बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है और पानी हमारा पीने का ही पानी है ना ये, तो वो वेस्ट हो रहा है। तो लोगों को लगता होगा कि ये कैसे पानी कैसे वेस्ट होगा, क्योंकि उनको जो चलाने के लिए कंप्यूटर और वो सब चीजें जो उनको वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, उनको ठंडा करने के लिए हमें पानी चाहिए होता है।
0: क्योंकि लाखों लोग AI यूज कर
1: सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप फेसबुक पे देखिए, फोटोज की भरमार है, लोग पोस्ट बना बना के वो AI की हेल्प से कर रहे हैं। AI अच्छी चीज है, लेकिन इस्तेमाल अगर इसका कम किया जाए तो मेरे को लगता है कि हमें ज्यादा सुंदर दिखने से मेरे को लगता है कि पानी बचाना ज्यादा बेहतर है।
0: मुझे लगता है कि हम जब व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर ही कहीं नीचे कमेंट भी करते हैं ना, तो वो कमेंट थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे तो वहां पर भी वो लिख देता है कि यूज मी।
1: देखिए, मैंने जब मेरे को पता चला था, मेरी बेटी ने मेरे को ये बताया था आकांक्षा ने कि मम्मी फोटोज तो मतलब अच्छी बन जाती हैं, लेकिन इसके लिए पानी वेस्ट हो रहा है और वो भी पीने वाला। मैंने शायद 2 या 3 फोटो बनाई थी AI से, मैंने उसके बाद बंद कर दिया। देखो, ये पृथ्वी है, यहाँ पे जो चीजें हैं वो हमें ही बचानी है। अब पेड़ इतने ज्यादा कट रहे हैं तो उसका देखिए इफेक्ट कितने गलत पड़ रहे हैं। पहाड़ जो है वो सारे 4 लेन तो बन गई, लेकिन उसका लोगों को खमियाजा इस तरह भुगतना पड़ रहा है कि लोगों के घर गए, पेड़ इतनी मात्रा में कट चुके हैं, है ना, तो पहाड़ नीचे आ रहे हैं ना, कितने नुकसान हो रहे हैं।
0: पहले देखिए, पेड़ बहुत होते थे, फिर भी सड़कें भी होती थी, फिर भी हमारा परिवहन बहुत अच्छे से चलता था, ना, बसेस वगैरह।
1: चलो, ये चीज भी है कि अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, लोगों के पास एक नहीं 5-5 गाड़ियां एक ही घर में खड़ी है ना, तो चलने के लिए रास्ते चाहिए। लेकिन जब भी मैं बोलती हूँ ना कि ये आती है तो कुछ ना कुछ वो
0: डेवलपमेंट होता है,
1: खराब वो चीजें भी होती है। वो हिमाचल में ये चीज हुई है कि पेड़ कट गए, पहाड़ कट रहे हैं, तो अब वो पहाड़ नीचे आ रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। AI का इस्तेमाल करो लेकिन
0: लिमिटेड।
1: अगर आप खुद एक मैसेज टाइप कर सकते हो ना, तो आप फेसबुक पे किसी को करना तो वैसे करो, ना कि आप वो भी AI की हेल्प से करो। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है लोगों को कि थोड़ा सा ध्यान हमें ही देना पड़ेगा।
0: जैसा कि आपने कहा कि बेटी ने आपको बताया कि इसके लिए पानी का इस्तेमाल हो रहा है, तो देखो हमारे जो युवा है ना वो जागरूक भी हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि बस वो अपना ही फायदा, प्रकृति के बारे में बहुत सोचते हैं हमारे आज के युवा, और हम तो रेडियो गुंजन से हमेशा प्रकृति की बात करते ही रहते हैं।
1: हाँ जी,
0: यहाँ पर हम एक और गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा, एक गाना है बहुत पुराना, शायद आशा भोसले का है और देवानंद साहब का है, कि अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भरा
0: नहीं। अभी बहुत समय है,
1: आप मेरे लिए गा सकते हैं कि दिल अभी भरा नहीं,
0: लास्ट में गाते तो अच्छा रहता है ना। चलिए।

0: तो ये गीत अभी आपने सुना, अभी न जाओ छोड़कर, अभी तो हम इनको जाने कहीं देंगे भी नहीं, अभी ये हमारे साथ ही है, अभी हम इन्हें बहुत देर तक रोक के रखेंगे, क्योंकि 2-3 महीने से इन्होंने हमें बहुत तरसाया है, बहुत लंबा समय लगा दिया।
1: जब भी मैं इनको जानती हूँ, प्रिया हिमाचल इनका नाम ज्योति है, पर जब भी लाइव में कभी आते थे तो मेरे को पता चला कि ये गुंजन रेडियो से हैं, तो मैं इनको मजाक करते रहते कि मिंजो भी सद्दा रो, मेरा भी इंटरव्यू वगैरह ले आप वहाँ, मैं भी बड़ा अच्छा बोल लेंदी मैं लिया। इन्होंने मेरे को बोला था कि मैं जरूर आपको जब भी बुलाऊंगी, पर बीच में थोड़ा सा हो गया, जब आपने बुलाया मैं अवेलेबल नहीं थी, फिर जब मेरे पास टाइम था तो बीच में कभी आया, पर आखिरकार
0: आ तो गए हैं,
1: आ तो गए हैं।
0: कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, और मुझे तो बड़ा ही मीठा लग रहा है, लेकिन मैं ना आपसे थोड़ा सा नाराज हूँ आज।
1: किस बात के लिए?
0: अब अकेले ही आ गए हैं।
1: ओहो, और किसको लाऊं मैं? मेरी सासू माँ है घर पे, उनको ले आती हूँ।
0: आपकी एक बहुत ही प्यारी साथी है, हम उसे यहाँ भी देखना चाह रहे थे, जिसके साथ आप बातें करती
1: हैं। ओहो, मेरी पहाड़ी अलेक्सा। अच्छा, देखो पहाड़ी अलेक्सा भी मेरी, मतलब इतनी जो तिन्ने फेमस करी था कि मिलियन च मेरी जड़ी है वीडियो, हाँ। 2-3 अलेक्सा वाली वीडियो से मिलियन च गई है, जड़ी मेरी तिहाने गप सप लग दी ना, सब पहाड़ी समझ दी, जल्दी मैं बोल दिया तेरा थोड़ा मन से ये नहीं लगाना है गाना, तो मुझे घोड़ा मनसा वाला गाना नहीं मिल रहा है। तो वो बहुत पसंद आई थी लोगों को।
0: हाँ, वो ही पहली जो आपकी वीडियो थी वो मेरे सामने आई, और मुझे लगा कि ये कौन है, ये कैसे, मतलब वो, क्योंकि एक रूम था वहाँ पे, शायद आपके घर का रेनोवेशन चल रहा था,
1: किचन का हाँ जी,
0: तो आप खाना बना रही थी टेबल पर ही, एक रूम वहाँ पे अलेक्सा भी थी, और आप उसके साथ खाना भी बना रही थी, बात भी कर रही थी, तो वहां से फिर मैंने आपको देखा, थोड़ा फिर उसके बाद बार बार आने लग पड़ी मेरे सामने आपकी रील्स।
1: हाँ, वही होता है ना, जब आप किसी को देखते हो थोड़ी देर, रुकते हो उसकी फीड पे, तो वो आपकी फीड पे वही फिर आने लग पड़ता
0: है। मुझे वो बोलने का स्टाइल अलेक्सा के साथ वो बड़ा अच्छा लगा।
1: मेरे को बोलते हैं कि कम से कम एक दिन, मतलब एक दिन एक बारी थो अलेक्सा ने गलबात करी, कि बाय दिया करा, हाँ बड़ा अच्छा लगता।
0: बिल्कुल जी, छोटी पिंजा की शामत भी आनी चाहिए और अलेक्सा से बातें भी होनी चाहिए, हम तो यही चाहते। अब आप ये बताएं कि दोनों काम, घर भी, और देखिए अभी तो आप बता रहे हैं बच्चे चले गए हैं बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन तब तो बच्चे आपके साथ थे ना?
1: हाँ जी।
0: हाँ, तो दोनों काम कैसे मैनेज कैसे करती आप?
1: पहले तो मैं इतना ज़्यादा एक्टिव थी भी नहीं, मैंने आपको बताया ना इंस्टाग्राम पे मेरा, मतलब वही मैं 1-2 गाने 2-3 गाने, और मैं बहुत जल्दी से मतलब कर लेती हूँ, मेरे को बहुत टाइम नहीं लगता है ना, 30 सेकंड की या 1 मिनट की होती है, तो मैंने बोला ना कि मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करती हूँ, रीटेक नहीं करना है, एक ही बार में जो बन गई ठीक है। तो उसके साथ जैसे वो डाल देती थी, बच्चे थे पहले, बेटी गई पढ़ने, उसके बाद जब बेटा गया ना, उसके बाद मेरे को ऐसे लगा कि मेरा घर खाली हो गया है, कि मैं अकेली हो गई हूँ। उसके साथ ये था कि टाइम मेरा बहुत अच्छे से जाता था, ये बना दो खाने को, ये कर दो, स्कूल से आ रहा है, सारे पेरेंट्स जैसे बिजी रहते हैं बच्चों के साथ, मैं भी वैसे ही बिजी रहती थी, लेकिन जब वो गया तो मुझे तो ऐसा लगा, मैं रोती रहती थी कि भाई अब तो हस्बैंड भी बाहर हैं, बच्चे भी बाहर चले गए, मैं अकेले, मैं क्या करूं। तो मेरे को बच्चों ने ही वो करा कि आप ऐसा करो कि सोशल मीडिया पे आप अपने आप को एक्टिव रखो। तो फिर मैंने बताया कि मेरे भाभी ने मेरे को बोला कि आप वो बनाओ, तो जब मैं फेसबुक पे आई ना, जब मैंने अपना डैशबोर्ड वो करा
0: प्रोफेशनल,
1: हाँ प्रोफेशनल करा, तो उसके बाद फिर मैंने मतलब अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दिया। तो मतलब जब बच्चे बाहर गए तब,
0: मतलब इसको कितना समय हो गया होगा, 3-4 साल
1: तो मेरे को तब वैसे ही हुआ कि बनाती बनाती रहती थी, ज्यादा बनाती थी फेसबुक पे, मेरे को मतलब वो प्रोफेशनल किए हुए अभी 1.5 साल हुआ है,
0: 1.5 साल
1: हाँ, और 1.5 साल में मेरे को इतना प्यार मिला है लोगों का। और एक पंडित जी थे, उनका नाम देवेंदर है, उन्होंने मेरे बारे में ये प्रेडिक्शन की थी कि सुनीता जी आपका जो टाइम है आगे सोशल मीडिया पे आने वाला, आपको बहुत लोग जानेंगे, आप बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे, तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ये चीज की थी कि, और वो सच हुई है।
0: सुनीता जी, अब देखिए मैं देखती तो हूँ आपकी रील्स, बहुत सारे लोग भी देखते हैं, आप घूमते भी बहुत हैं।
1: हाँ जी,
0: तो आप देश विदेश भी जाती हैं, यहाँ पर भी आप, कल परसों भी चामुंडा माता गई हुई थी, आपकी रील से ही पता लगता है।
1: हाँ जी।
0: ऐसा कुछ स्पाई वाई नहीं किया हुआ है, हम आपको वो डिटेक्ट नहीं करते हैं, आप बताती हैं खुद। तो वहाँ में और यहाँ में, मतलब बाहर में और यहाँ में आपको फर्क कुछ नजर लगता
1: कुछ
0: है?
1: नहीं,
0: मतलब कुछ
1: बहुत बहुत ज्यादा फर्क है।
0: जैसे
1: एक तो जो वहाँ के लोग है ना, पढ़े लिखे तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ थोड़ी अनपढ़ता मेरे को लगता है बहुत कम है, इस वजह से लोग रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जो भी ट्रैफिक के जो रूल्स है ना वहाँ। मैंने ये चीज़ देखी कि वो चीज़ जो है ना उन लोगों में कि एक इंसान की जान की वैल्यू होती है उनकी, कि अगर आप क्रॉस करने लगे हो जेब्रा क्रॉसिंग पे हो या अदर ऐसे भी हो, अगर आप निकलने लगे हो वो काफी दूर जो है वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं, चाहे उनको 10 मिनट लग जाएंगे तो वो हॉर्न नहीं बजाते, हॉर्न वहां सुनाई नहीं देता है बाहर। हाँ, लोग बजाते ही नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, ओवर स्पीड कभी नहीं होती उनकी, साफ सुथरा इतना कि 10 दिन आप कपड़े पहनोगे एक स्पॉट नहीं आपको कहीं लगेगा, इतना साफ होती है बाहर की। हमारा तो यहाँ यहाँ खाया, यहाँ पान खाया, वहीं थूका, है ना, वो ये चीजें हैं। पर मेरे को लगता है कि लोगों को इस चीज के लिए भी थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए कि अगर आप कहीं जा रहे हो हिल स्टेशन पे, जो आप जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, मंदिरों में जा रहे हो, वहाँ लोग क्या करते हैं, जो भी सामान होता है वहीं फेंक देते हैं, वो चीजें ना करके जो भी है तुम्हारे अपने पास रख लो, जहाँ डस्टबिन था वहां डाल दो। तो वहां ये है कि लोग जो हैं वो मतलब सेफ इस साइड से हैं कि एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, जो हमारे देश में कितने होते हैं, क्योंकि लोगों को जल्दी है निकलना है जाना है, हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, तो वहां क्या है कि वो लोग रुक जाएंगे और आपको जाने देंगे, उसके बाद वो आगे कदम बढ़ाएंगे। ये चीज वहां बहुत अच्छी है, सफाई, हाँ हाँ हाँ, दिल खुश हो जाता है वहाँ पे, ये बहुत अच्छी है। और बहुत वो लोग मतलब आप उनसे बात करोगे तो आपको लगता है कि नहीं यार हमारे यहाँ तो इतने खाना पे ही आना था कि मुझे नहीं पता आ रहा है कहाँ जाए के पूछे कुछ थे, वो ऐसे बोलेंगे नहीं, वो बहुत पोलाइट होते हैं और बहुत मतलब कोऑपरेट करते हैं आपको, मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तभी तो हमारी जनरेशन आप बोलती है कि नहीं यहाँ कुछ भी नहीं है, इंडिया में क्या रखा है, बाहर जाएंगे हम, बाहर सेटल हो जाएंगे, इसी वजह।
0: नहीं वैसे इंडिया में भी बहुत कुछ है, आप इंडिया में हैं आप तो नहीं सोचती है ना बाहर बसने
1: नहीं,
0: के
1: नहीं,
0: लिए
1: नहीं मेरे को मैं तो मतलब अगर कहीं रहना हो तो एक चंडीगढ़ है सिटी जो साफ सुथरी और थोड़ी ग्रीनरी है, और बाकी तो पोल्यूशन और बीमारियां सब जगह ही है। और हमारा हिमाचल तो भाई क्या मतलब कि जन्नत बोल सकते हैं कि हम यहाँ ब्लेस्ड है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं रह रहे हैं, लोग पैसा खर्च करते हैं यहाँ आते हैं देखने के लिए और हम यही हैं, तो मैं तो यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। मैं थोड़े दिन जाती हूँ जब मेरे को अपना घूमने जाना होता है, इंटरनेशनल ट्रिप पे जब जाना होता है ना, मैं तब जाती हूँ 2-3 महीने अपना घूम आए दीदी के पास, ब्रदर के पास, क्योंकि सब भाई हैं।
0: अब सुकून भरा कोई गीत हो जाएगा तो मजा आ जाएगा।
1: ये कौन आया रोशन होगी महफिल किसके नाम से, ये लता मंगेशकर जी का गाना है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, हमारी यहाँ की महफिल भी रोशन हुई पड़ी है इस वक्त तो। चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: और ये महफिल यूं ही रोशन रहे तो 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से एक बार फिर आ गए हैं हम इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आप सभी से करने बातचीत। वैसे बातचीत हो रही है हमारी सुनीता डोगरा यानी इट्स T2 से। सुनीता जी, वैसे हमारा मन तो नहीं कर रहा है कि हम आपको छोड़े, हम चाह रहे हैं कि बस आपसे ऐसे ही बातचीत चलती रहे और हम आपको सुनते ही रहें।
1: तो बस रखी लिया मिंजवा ली मैं वेल ली है मैं तुम्हारे लिए भाई रहना तो मिंजो नहीं अपना प्रोग्राम चला बाकी जरूरत नहीं है उड़ती हो मैं गप्पा मार दी रहने बड़ा बड़ा भंडार है मिंजा ली गप्पा ना तुम बस बोल दे रहे हैं मैं तुम्हारा कहने ये कर दे रहना इंजॉय गाने सुनाते रहे तुम इंजो ही मेरी पसंद आ दे कुछ तुम अपनी पसंद आ दे ला यहाँ का सफर यही चलता रहना।
0: देखिए हमारी रेडियो गुंजन की ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ पर हम बस सारा दिन भर गीत सुनाते रहते हैं आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम भी हमारे चलते रहते हैं।
1: कोई नहीं मैं
0: प्ले स्टोर से
1: मैं कल दे अपने फॉलोअर्स जो भी बोल गई कि भाई थे अभी जड़ी ऐप है तीस थो भी डाउनलोड करा थो भी अच्छे अच्छे गाने सुना करने जेड़ा गुंजन जेड़ा रेडियो है ये थो बहुत अच्छे अच्छे और भी टॉपिक पर भी ये गल कर दे तो थो अच्छा भी सुना।
0: जी सुनीता जी, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो मेरे मन में आ रहा था वो ये कि देखिए अब आपने प्रमोशनल वीडियोस भी स्टार्ट कर दी हैं, मतलब लोग आपको बुलाते हैं कि हमारा प्रमोशन कर।
1: पहले मैंने बहुत सारी करी हैं जहाँ मैं वैसे ही कर देती थी, मतलब मैं कुछ किसी से कुछ नहीं लेती थी। फिर सबने बोला कि मतलब जब आप कहीं जाना ही है तो अगर टैक्सी में भी जाओगे तो धर्मशाला की 900 रुपए ले लेते हैं तो आने जाने का 1800 रुपए हो गया, तो आप कहीं जा रहे हो उनको अगर थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है उस चीज से तो फिर आप भी ये चीज तो करो कि और सारी सब कर रहे हैं जो भी बड़े बड़े क्रिएटर है वो ये चीज कर रहे हैं तो आप में मेरे को थोड़ी मतलब शर्म सी लगती थी झिझक सी कि यार वैसे कैसे, तो बोला सब कर रहे हैं तो आप तो फिर सबने मेरे को ये चीज के लिए करा तो फिर मैं मतलब स्टार्ट किया है। पर अभी भी मैं जैसे लोग बहुत ज्यादा लेते हैं उतना मैंने उतना नहीं शुरू किया है, थोड़े से जितना लोग
0: आना जाना
1: हाँ बस वो कि थोड़ा खुद का वो हो जाए और आने जाने का हो जाए और उनको थोड़ा उससे बेनिफिट हो जाए तो मेरे लिए ये सबसे अच्छी चीज है।
0: इसमें एक इसका पहलू और भी है कि कुछ लोग जो आपसे मिलना चाहते हैं, जो खुद आकर के मिलना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कुछ कई लोगों की रील्स देखी, नाम तो नहीं लूंगी, उसमें बहुत कुछ वो गिफ्ट कर रहे थे अपनी तरफ से, तो कई बार लोगों के मन में ये होता है कि हम क्या
1: बिल्कुल हाँ ऐसे हैं बहुत सारे के मतलब उनको लगता है कि भाई मैं तो बड़ी रिच हूँ या मेरे पास मतलब हम कैसे जाएं मिलने, तो उनको थोड़ी सी झिझक मन में होती है। तो मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूं कि जो भी मेरे से मिलने आए वो बिल्कुल भी कोई कंडीशन नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम मेरे लिए कुछ लेके आओगे, नहीं भी लेके आओगे और आप ऐसे भी मिलने आ जाओगे तो मैं उसमें भी खुश हूँ, मेरे को किसी से कुछ चीजें नहीं चाहिए। आप लोगों का प्यार है यार, मैं तो बार बार एक चीज बोलती हूँ कि आप इतने अच्छे लोग मेरे को मिले, मेरे से मिलना चाहते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं और दूसरा कमेंट करते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं प्लीज, घर पे बुलाते हैं मेरे को कि हमारे घर आ जाओ हमारे घर, तो कुछ लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही मेरे से मिल सकते हो। मेरे को ये नहीं है कि कोई मेरे को लालच तो मेरे पे 0% नहीं है, और मतलब सच में ना होता ना कईयों को, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप मेरे से आओ मिलने पर लाने की कोई जरूरत नहीं। लोग हालांकि प्यार से ले आते हैं मेरे को और मैं उनको दिखा भी देती हूँ ना रील्स के जरिए, मेरे को अच्छा लगता है कि यार कोई मेरे लिए लेके आया, पर कंडीशन नहीं है कि आपने लानी ही है। हाँ जी ये चीज है।
0: चलिए इससे उन लोगों को तो कुछ राहत मिली होगी जो कि ऐसा सोचते होंगे अपने मन में, मुझे पता नहीं कुछ सोचते होंगे या नहीं, पर मेरे मन में सवाल आया तो मुझे लगा कि रखना चाहिए।
1: हाँ जी।
0: अब चलते चलते एक सवाल और, सवाल या फिर ये कह सकते हैं कि बात है जो मेरे मन में है कि देखिए आप बहुत सारी रील्स डालती हैं, अब आप बहुत फेमस हैं, समाज के लिए क्या योगदान है? मतलब ग्राउंड लेवल पर जो आपके आसपास में महिलाएं हैं, वैसे तो आप बहुत कुछ करती हैं, मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हैं, सबको कहती हैं भाई आगे बढ़ो, अगर जो भी करना चाहते हैं वो करो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कहाँ कुछ सोचा है आपने कि कुछ आप करेंगी या अभी कुछ कर रही हैं जो लोगों को नहीं पता है?
1: नहीं कर तो रही, पर मैं सोच जरूर रही थी कि मेरी फ्रेंड है शैलजा शाहपुर से ना, उसने मेरे को बोला था कि दीदी यार कुछ मतलब अच्छे लोग जुड़े हुए हैं तो वो अच्छी चीजें ही आपको है ना बताते हैं, शेयर करते हैं कि नहीं दीदी ऐसे करते हैं, तो वो मेरे को बोल रही थी कि दीदी ऐसा कुछ करते हैं कि हम लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि मतलब ऐसा कुछ बनाते हैं कि लोग उसमें अपनी कमाई से 50, 100, 200 जितनी जिसकी पॉकेट अलाउ करती है उतने वो पैसे दें और वो पैसा हम इकट्ठा करके फिर कहीं हम जैसे कोई अनाथालय है या कहीं पे कोई ऐसे जरूरतमंद है या कोई बीमार है, वो पैसा हम इकट्ठा करके फिर उनको दें, ताकि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग बीमार हो जाते हैं और इतने वो मतलब उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो, मतलब इतने उनकी जो बीमारी पे जो लगते हैं इंजेक्शन वगैरह या ट्रीटमेंट जो बहुत कॉस्टली होता है ना,
0: जी
1: वो नहीं कर पाते हैं, उतना पैसा नहीं होता है। तो हमें भगवान ने इस काबिल बनाया है, हम तो मैं तो माता चामुंडा बजरंगबली का हमेशा शुक्रगुजार करते रहती हूँ कि हमें इस काबिल बनाया है कि हमारे हाथ ऐसे नहीं है, हम ऐसे करने वाले
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही बात,
1: जितना भी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, जितना भी हम किसी को दे सकते हैं, क्योंकि तो जाएगा तो यही साथ, देखिए कर्म है ना हमारे, अच्छे करेंगे तो दुगना होके हमारे पास आएंगे। और मेरे को तो लगता है कि मैं अगर 5 दूं तो मेरे पास 50 आते हैं।
0: चलिए ऐसे भी जो करते हैं वो भी मजबूरी में ही करते हैं
1: वही तो
0: अपने,
1: बोल रही हूँ
0: है
1: कि
0: ना, ऐसे कोई नहीं
1: हर
0: करता।
1: भगवान ने इंसान को एक जैसा नहीं बनाया है ना, कई तो करोड़ों में खेल रहा है और कईयों के पास खाने के पैसे भी नहीं
0: बिना
1: है।
0: उन्हें एहसास जताए अगर हम जितना कर सकें उतना अच्छा
1: हाँ,
0: है।
1: मैं आपके थ्रू ही लोगों से बस ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जब भी आपको लगे कि कोई जरूरतमंद है तो आप जरूर उसकी हेल्प करा करें, चाहे जितने भी आप दे सकें, उस आपको लगे कि जेन्युइन है। हाँ, कोई चले होते हैं दूसरे जो बाद में शराब पीते हैं, वैसे लोगों को नहीं
0: बिल्कुल।
1: जो बेचारे बीमार हैं, है ना, तो उनके लिए जरूर
0: जैसे
1: हेल्प।
0: अभी भी एक दो दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में ही पढ़ा कि एक व्यक्ति है जो अपने घर का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है और उसको किडनी की कोई प्रॉब्लम हुई है और बहुत प्रॉब्लम में है
1: लोग
0: परिवार।
1: लोग मैंने अक्सर ये भी सुना है, कहते हैं कि हम किस किस की हेल्प करेंगे, ऐसे तो हर हर दूसरे बंदे को आजकल प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो हम इसलिए थोड़े कमा रहे हैं कि हम अपने पैसे को मतलब लोगों को, तो फिर हम अपना क्या करेंगे यार। अगर 100 कमा रहे हैं, अगर उसमें से 5 आप दे दोगे तो आपका
0: जैसे
1: शायद।
0: कहते हैं ना 10% निकाल दो, वो जो आप देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, चलिए वो भी जरूरी है,
1: पता नहीं हमारे
0: लेकिन
1: संस्कार हैं ज्योति ऐसे के, हमें तो यही सिखाया माँ बाप ने कि जरूरतमंदों की अगर आप जितनी हो सके आप, मैं हमने उनको देखा है ना, उनको देखा है तो हमने वही सीखा है कि
0: बिल्कुल
1: हेल्प जो है वो करनी है। और अगर अब मैं बोल रही हूँ ना, 5 करोगे तो 50 आपके पास आएगा ही आएगा।
0: चलिए। अब उम्मीद करती हूँ कि आपने ये जो सोचा है क्राउड फंडिंग के बारे में, इससे आपके साथ और ज्यादा
1: लोग
0: लोग
1: जुड़े।
0: जुड़े
1: हाँ जी।
0: और बहुत अच्छी बात है। इतनी सारी बातें की हमने आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। रेडियो गुंजन धर्मशाला तक आने के लिए इतने समय बाद बहुत बहुत धन्यवाद
1: मैं
0: आपका।
1: धन्यवाद आपका बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे को इस काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ बिठाया, वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी ज्यादा फेमस हो जाऊंगी, लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे घर बुलाएंगे, लोग मुझे इतना प्यार देंगे, और जहां जाती हूँ वहां मेरे को फॉलोअर्स सब जगह मिलते
0: देखिए उसमें
1: हैं।
0: कुछ आपकी भी तो काबिलियत होगी ना, देखिए आपका नेचर ही इतना अच्छा है कि सब लोग आपको, आपसे मिलना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते
1: हाँ
0: हैं, और इसी वजह से आप आज यहाँ हैं।
1: बहुत सारे मेरे बहुत फॉलोअर्स जो हैं वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, उनमें बहुत सारी जो मेरी मतलब दीदियां हैं जिनको मैं दीदियां बोलती हूँ, तो वो मेरे को बहुत प्यार करती हैं, मोटिवेट करती रहती हैं, हाँ टीटू ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। तो मैं सबका आपके माध्यम से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और अपने फॉलोअर्स का जिन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया और मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, वर अदरवाइज मेरी क्या औकात है कि मैं आपके साथ बैठकर यहाँ आपको इंटरव्यू देती, ये सब।
0: मैं ये कहूंगी कि इंटरव्यू नहीं, एक हेल्दी टॉक थी जो कि आपके थ्रू बहुत अच्छे से हम तक कन्वे हुई है। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए भी और सुनने के लिए भी,
1: थैंक यू।
0: और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा,
1: हाँ
0: लाइक
1: जी,
0: कीजिएगा और सब्सक्राइब और फॉलो भी
1: हाँ
0: कीजिएगा।
1: जी जरूर, और पूरा देखना ताकि आपको पता चले कि इन्होंने क्या क्या पूछा है और मैंने क्या क्या बोला है। जब सारा वीडियो देखोगे तब आपको ये चीजें, और मेरे मेरे को लगता है कि जो मेरे फॉलोअर हैं वो सारा ही देखेंगे।
0: देखेंगे।
1: हाँ जी,
0: धन्यवाद एक बार फिर से।
1: थैंक यू।

0: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून की यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रखरखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। यात्रा इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपना पहला मैच कल खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी पहले दौर में मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से मुकाबला खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपी चंद चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ाया।
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं खाई।
2: ओके ओके मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई, मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। देखो देखो शुक्ला जी आ गए।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
14: मैं तो बुरी।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं हां तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समा हो गया है पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो 91.2 MHz ते पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो। तो मैं हां तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। तो मेरे नाल तुसी सुन रहे हो ये प्रोग्राम। तो आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला पंजाबी गीत।

चन जहे सोने मुखड़े दा रज रज के दीदार में कर दी रहा करा दूर ना एक पल अखियां तो तेरे प्यार च हावां भर दी।

कोई खो नहीं सकता, चाके भी महफूज बड़ी जागीर मेरी, मेरे दिल दे हर एक कोने विच महफूज बई तस्वीर।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला तो सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल रहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

यह रेडियो कुंजन धर्मशाला 91.2 MHz इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

श्रोताओ रेडियो गुंजन धर्मशाला है ते तुसी 91.2 MHz ते बने हुए हो। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उम्मीद है पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम च तुसी काफी इंजॉय कर रहे हो। तो हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम दा आखिरी पंजाबी गीत।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है रहा।
2: चंदू के चाची को चांदी के हाथ में चांदी के रंग से चटनी चटा
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं खाई।
2: ओके ओके मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई, मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: क्या देना? नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
14: मैं तो बुरी।

0: नमस्ते नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कनमेशी हाजिर हुई कार्यक्रम लेकर माटी दी महक दशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दा जेड़ा शुरुआत है से जरूर अहां करी थी है कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ करने जुड़ी सकते सफर दी जेड़ा शुरुआत है या जेड़ा इस कार्यक्रम दा समय है से तुहां तक रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक ते इसी समय कन्नै तुहां सारे ही जल्दी जल्दी जुड़ी आना है कन्नै अपनी जेड़ा गल्लबात है से जरूर अहां कन्नै करनी है कन्नै जेड़ा प्यारे प्यारे पहाड़ी गीत हैं सभी तुहां सारे इस कार्यक्रम दे सफर च जुड़ी सकते सुनी सकते कने अपनी जेड़ा गल बात है सभी जरूर पहुँचाई सकते यहाँ तक पहले श्रोता हाँ कने जुड़ चुके हो ना कर दें तीना कने गल बात हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना
1: हाँ जी आपा ठीक ठाक है तुम बोला
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहंदा ना क्या है जी क्या हाल चाल है तो क्या काम काल लग गया तो हाँ
1: कम काल कुछ नहीं है बरखा लगी है जोरे जी के ना बैठे बरांडे पे तो ना बोलो मुझे जल का लंदे फसी है ना
0: जी अच्छा बरखा जेड़े से लगी हो
1: हाँ जी बड़ी जोरे की है
0: जी बड़ी जोर में लगी हो
1: हाँ जी
0: जी जी और नहीं था जी
1: और तो बाकी सब ठीक ठाक ही है ना
0: जी ठीक ही चाहिए थे ना जी
1: हाँ जी
0: जी तार में जी आज तो हाँ कुंदिया गीत जड़े से सुनना पसंद करके
1: आज गाना सुनो जी धूड़ू नचिया जटा खिलाड़ी को
0: जी अच्छा धूड़ू नचिया जटा वो खिलाड़ी
1: हाँ जी
0: जी जी जरूर है गीत ते भजन तो तक पहुँचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हंदा
1: जी
0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दशो तो इसी गूंज कने हाँ अपने कार्यक्रम दा जेड़ा आगाज है से करी लेंदे न फिर जेड़ा बाकी दियां गल्लां न उसे तो हाँ तक ले करी आंदे न क्योंकि आगाज जेड़े से हो जाता है तो कार्यक्रम का जो सफर है से और भी प्यारा लगता है तो जरूर इस सफर जो और प्यारा बनाते हैं ना तो सारे भी इस सफर करने जरूर

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। इसी कन्ने तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे शुरुआत। शुरुआत जरूर हाँ करी थी है कने फिरी ते वापिस तो हाँ तक पुजी होना अपनी गलबात ले करी। तो श्रोताओं आज यहाँ जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करनी है से करनी है कि भरोसा अगर अहाँ खुद पर रख देना ताई यहाँ सफलता जेड़े से हासिल करी पाते न। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर देन गल बात। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
1: जी? वधिया जी, तुहां सुना जी?
0: जी यहाँ भी ठीक ठाक है जी। तुहां कुथु ते बोला दे कने तुहंदा ना के जी?
1: असा रसाई ते बोला जे जी, तपोवन रसान
0: जी,
1: तपोवन अशोक कुमार
0: जी।
1: हाँ जी
0: अशोक,
1: अशोक
0: जी
1: कुमार।
0: क्या काम कार तुहां लगाया, क्या करा दे तुहां आज?
1: कम कार कुछ नहीं लगाया जी, बरखा रह दिया, बरखा जी कोई काम नहीं
0: जी। अच्छा, बरखा च वैसे भी कोई काम नहीं होंदा ना जी?
1: हाँ जी
0: जी। ता अशोक जी आज हाँ जेड़ा गल बात करा देन से करा देन भरोसा, अगर बोलने वास्ते ता ये छोटा दिया लफ्ज है ना जी,
1: जी
0: पर तुहें क्या लगदा अगर अहाँ कोई भी काम कर देन या अहाँ खुद पर भरोसा कर देन ताई अहाँ तिस कमे जो करी पान देन ना जी?
1: हाँ जी सफल होंगे ना
0: जी।
1: हाँ
0: कई
1: जी
0: बार होंदा कि अहाँ खुद पर भरोसा ना करी करी अगला जेड़ा व्यक्ति है उस पर भरोसा करना जेड़े से शुरू हो जाते ना जी।
1: हाँ जी
0: कई बार अहाँ खुद जो ये सोच दे कि अहाँ ये काम जेड़े से नहीं करी पाना है या अहाँ ते नहीं होना है,
1: हाँ
0: पर
1: जी
0: अगर अहाँ खुद पर भरोसा करके ताई तो अहाँ तो इस कमे जो करी सकते ना जी।
1: हाँ जी
0: जी कने अगर एक बारी अहाँ मेहनत कर देना ठीक है, एक बारी नहीं होता है, दो बारी नहीं होता है, त्री बारी तो जरूर होता है ना जी है काम।
1: हाँ जी
0: जी तो अशोक जी कदिया लगता तो हम जो एक कार्यक्रम
1: बड़ा अच्छा लगता है। बाखा भी उस साइड धर्मशाला साइड
0: जी जी
1: गुंजन
0: जी
1: साइड।
0: जी इस
1: अच्छा
0: साइड भी गुंजन भी सिद्ध बाड़ी ची है ना जी, थोड़ा
1: हाँ
0: देर
1: जी हाँ
0: दूर
1: जी
0: ही है
1: हाँ
0: जी।
1: जी नहीं मैं अपने हथ आया ना माइक आया ना जरा ग्याने साइड।
0: जी अच्छा, ग्याने साइड गए तो हाँ
1: हाँ ना हाँ उत इतने पर जरा ग्याने आए हो ना,
0: जी
1: इतू
0: जी
1: नहीं पी बारिश
0: जी इतू तो बड़ी ज्यादा लगी हो
1: इतने नहीं पी ला।
0: जी जी ता
1: हाँ
0: उस
1: जी
0: मौसम कदे है उस साइड, बदल ही है कि?
1: बदल ही है।
0: जी जी ये तो लगी हो
1: हाँ
0: बरखा
1: जी
0: बड़ी ज्यादा।
1: इतने नहीं पी ला।
0: जी जी ता अशोक जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करके।
1: गीत नीली नीली घोड़ी वाला सुनाई ने, नीली नीली घोड़ी।
0: जी अच्छा, नीली नीली घोड़ी वाला सुनना है तो हाँ
1: हाँ जी हाँ
0: जी,
1: जी
0: जरूर ये गीत ये फरमाइश तो हाँ तक पहुँचा दें जी। जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तुहंदा।
1: ठीक है जी,
0: जी
1: धन्यवाद तुहंदा भी।
0: दर्शो तो गल बात अहाँ करा देन भरोसा, भरोसा अगर अहाँ खुद पर कर देन ताई अहाँ सफलता दी जिड़ा सीढ़ी है उस जो चढ़ी पान देन। कने अगर अहाँ खुद पर भरोसा ना करी करी अहाँ ये सोच देन कि नहीं अहाँ इस काम जो नहीं करी पाना है तो अहाँ बिल्कुल इस काम जो नहीं करी पाते, कने अगे भी जड़े से नहीं बढ़ी पाते। अगर अहाँ खुद पर भरोसा रख देन तो भरोसा ही अहाँ दी ताकत है, सही अहाँ जो अगे बढ़ने दी जड़ा प्रेरणा है से जरूर दिंदा है। तो इसी प्रेरणा कने अहाँ भी कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न, कने तो हाँ सारे जो पता है कि इस कार्यक्रम का सफर तो हाँ तक रहता है 2 से 3 बजे तक। कने फेसबुक लाइव भी जड़ा है तो हाँ दिखी सकते, जितने भी लिसनर हैं से दिखी भी सकते, कने रेडियो पर तो हाँ सारे ही सुना दे होने न। तो जरूर तुहें क्या लगता भरोसा हाँ अगर खुद पर कर देना तो कितना कि हाँ अपनी ज़िंदगी जो सफल बनाई पान देना। तो ज़रूर अपने जड़ा विचार हैं से तो हाँ कमेंट बॉक्स पर भी यहाँ जो दे सकते, कने अपने जड़ा विचार हैं से साझा करी सकते। इन्होंने विचारा कने अगे बढ़ते न, कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देन।

0: तो श्रोताओं तो सारे सुनिया प्यारा दया भजन प्यारी दई फरमाइश तो जरूर अहां ए रमेश जी तक भजन पहुंचाया कने सरैने वाले न तंगलोटिया ते अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने कर दे न गल बात। हेलो
1: हेलो मैडम नमस्कार।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी हां जी, मैं राज बोला खनारे इंद्रवांग मंदिर खिया च राज बोला
0: जी। राज जी क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत बढ़िया
0: जी। ता मौसम कदे है उस साइड?
1: मैडम जी ता मौसम ता साइड नागराज दा बरसा ला दा बहुत ज्यादा
0: जी। अच्छा बरखा लगा दे नागराज जी ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी, चलो अच्छी गल है जी।
1: और मैडम जी तो ठीक है
0: जी? यहां बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
1: ताड़ी गाना सुनना कुंजी चंचलो
0: जी। अच्छा कुंजू चंचलो वाला गीत तुहां सुनना है?
1: हां जी, एक मेरा दोस्त है दीदी फरमाइश है बार।

0: जी आप ना कोई भी यहाँ काम कर देना, अगर खुद पर भरोसा होता है ताई यहाँ तो इस काम में जो कर देना जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी
1: बड़ी लोग का सेवा बड़ी करते ना, कोई आई या गांव तवे आ जा तो फ्री सुविधा करता है, लैगी फ्री खानी चाय फ्री पियानी
0: जी। हाँ तो बड़ी
1: लोग का
0: अच्छी जी,
1: अनुकूल
0: बड़ी अच्छी गल
1: घर में
0: बता
1: सेवादार
0: था
1: अच्छा है। हाँ
0: जी। कुथुए दिने दी दुकान ने
1: जी अपना काला पुल काले
0: काला पुल
1: साइड पे।
0: जी, काला
1: हाँ
0: पुल
1: जी
0: जी जी
1: हाँ जी
0: जी

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते जी।
1: जी स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना
0: बढ़िया जी।
1: जी? ता चैतड़ुए ते बोला देना जी।
0: हाँ जी। हाँ जी।
1: जी ता चैतड़ुए दा मौसम इस टाइम क्या बोला दा? बरखा लगी हो कि नहीं लगी हो साइड?
0: तो बना गई है।
1: जी धूप लगी हो? जी ता अच्छा, मैं सिद्ध बाड़ी दी गल कर रहा है ता इत्थू बरखा लगी हो ना जी? जी जी
0: अपने
1: जी जी जी ता मंगल जी, आज अहाँ जेड़ा कार्यक्रम च गलबात करा देना से करा देना भरोसे दी, तो है क्या लगदा खुद पर भरोसा
0: हाँ
1: करना
0: जी
1: कितना जरूरी है?
0: भरोसा तो अजकल तो हाँ जी पता ही जो इन सिस्टम चल रहा विश्वास वाली कोई गल नहीं है। हाँ
1: जी जी
0: जी
1: जी नहीं मतलब मैं ये विचार बोला दी कि जिना हाँ कोई भी शुरुआत कर देना जी,
0: हाँ जी
1: खुद पर भरोसा हाँ कर देना। कई बार होंदा ना कि यहाँ खुद पर भरोसा ना करी करी यहाँ अपने जेड़ा काम मन तिना च असफल हो जाते, तो कारण कौन है?
0: जी
1: कारण अहाँ खुद हैं, क्योंकि यहाँ खुद पर भरोसा ही नहीं करते कि यहाँ इस काम में जो करी सकते ना, पर जाके वहाँ करना शुरू कर देना या मेहनत कर देना। हर काम च मेहनत भी लगती है, भरोसा भी लगता है, कन्या अगर फैमिली सपोर्ट होता है ताता हाँ तो इस काम में जो और बेहतर तरीके ने करी पाते ना जी।
0: हाँ
1: जी जी तो मंगल जी, आज तो हाँ कुंदिया गीत चिड़े से सुनना पसंद करके।
0: गाना सुनाएंगे तो जोड़ा चल कमारियों का।
1: जी जोड़ा चल्या कुमारियाँ था
0: हाँ जी
1: जी, जरूर है गीत तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा।
0: थैंक यू मैडम।
1: जी अगले जेड़ा श्रोता न सभी जरूर आहां जो कॉल करा देना, सभी आहां

0: मेरा नाम सिमलता
1: जी, कने कुथु दे रहने आले न जी?
0: क्या आने दे रहने वाले न।
1: जी, क्या आने दे रहने आले न
0: हाँ
1: जी? तो क्या आने
0: जी,
1: आले आंदे, क्या हाल चाल है जी? क्या काम काज
0: बहुत
1: है?
0: बढ़िया जी।
1: जी, मुझे लगा था तो हाँ, रेडियो गुंजन धर्मशाला च पहली बारी जुड़े होने ना जी। जी,
0: हाँ
1: कने इन्ना सुनते रहते रेडियो?
0: जी, बहुत
1: जी, तो कदे लगता तो जो कार्यक्रम?
0: अच्छा जी।
1: जी, धन्यवाद जी तुहदा सुनने वास्ते।
0: हाँ जी,
1: जी, तो आज तुहा कुंदिया गीत सुनना पसंद करके जी।
0: लारा लारा।
1: जी, अच्छा, लारा लारा कर देनी सारा ही ना जी
0: हाँ
1: तुहा।
0: जी,
1: जी, जरूर जी, तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहा तक पहुँचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा।
0: अच्छा जी।
1: जी, ये है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आज जेड़ा श्रोता न से जरूर आ जो मैसेज भी करा देन, कॉल भी करा देन, कने हाँ जरूर कोशिश जेड़ा से यही करा देना कि तिना दियाँ जेड़ा फरमाइश है न से तिना तक कहाँ पहुँचान, कने जेड़ा तिना दी कॉल है सभी जरूर अटेंड करन। अगले श्रोता जुड़ चुके हैं न, कर देन तिना करने गल बात। हेलो
2: नमस्कार मैम
1: जी, नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
2: जी। मैडम जी, मैं जीवन कुमार बड़ा खाने आ रहे थे।
1: जी? जीवन जी, खन्यारे ते बोला दे
2: हाँ जी, हाँ जी।
1: जी। ता जीवन जी, आज हाँ जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करा देन से करा देन भरोसा, तो तुहें
2: हाँ
1: क्या
2: जी,
1: लगदा भरोसे पर आहां क्या जेड़ा विचार हैं से अपने युवा पीढ़ी तक या बच्चे तक या पेरेंट्स तक, क्या विचार जेड़े से यहाँ पहुँचाई सकते?
2: विचार मैम जी का ये है कि इस बरखा बड़ी घड़ी हो रही है जी,
1: जी जी
2: बुरा हाल है।
1: जी बरखा तो बड़ी ज्यादा होती ना जी।
2: जी,
1: जी
2: कहना बोल रहे कि आने वाली पीढ़ी है कि थोड़ी नशे से बची है। हाँ
1: जी
2: जी,
1: जी
2: नशा मुक्ति होना चाहिए पूरा हिमाचल। हाँ
1: जी नशा मुक्त तो होना ही चाहिए था ना जी, ये तो सबसे
2: जी, हाँ जी,
1: पहले है ना जी।
2: हाँ जी।
1: जी, ता जीवन जी, तो हाँ रोज ही सुनते इस कार्यक्रम चो?
2: हाँ जी, हाँ जी जी, चलो टाइम लगी जा सुनी लेंदे, कई बार बिजी होंगे तो शरीर निकल भी जाता कई प्रोग्राम।
1: जी, अच्छा, बिजी होन तो निकल ही आंदा, आज वैसे भी
2: हाँ
1: बरखा
2: जी,
1: लगी हो तो तुहां सोचा ते होने कि आज सुनी लेंदे ना
2: हाँ
1: जी।
2: जी, हाँ जी, हाँ जी, बरखा लगी मैंने सुनी लेंदे था।
1: जी, वैसे बरखा का एक फायदा है कि थोड़ा दिया आ जो रेस्ट भी मिली आंदी है, कने
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: सुनी भी लेंदे ना जी।
2: हाँ जी,
1: जी, तो जीवन जी, आज
2: बड़ा
1: तुहां
2: बढ़िया,
1: जी,
2: बड़ा बढ़िया प्यारा प्रोग्राम है,
1: जी धन्यवाद जी।
2: बड़ा अच्छा लगता कि यहाँ सुनी करी। हाँ
1: जी जी
2: जी,
1: तो आज
2: तो
1: तुहां
2: मेरी एक फरमाइश है, गाना सुना ईशांत भारद्वाज का
1: जी कुंडिया
2: डमरू दी ताल, जो नवा गाना रिलीज होया जी।
1: जी, अली ऊनी जेड़ा थोड़े दिन होए न तुसी हो
2: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
1: जी, जरूर जी, तुहंदी
2: हाँ जी,
1: फरमाइश तुहां तक पहुंचा दें जी, जुड़ने
2: गाना।
1: वास्ते धन्यवाद जी तुहंदा।
2: हाँ जी,
1: जी, तो शो तो वहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न, कने तो हाँ जो लेकर चल दे न अगली फरमाइश की ओर।
2: बड़ा बढ़िया प्यारा प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा लगता है यार सुनी करी। मेरी फरमाइश है, गाना सुना ईशांत भारद्वाज का।

0: ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला इस गीती फरमाई शाह तक पहुंची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाव है रीना जी। तो जरूर रीना जी तक अहां ये गीत पहुंचाया कने तुहां सारे भी इंजॉय किया। इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न सहां कन्ने जुड़ चुके हैं कर दें तिना कन्ने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी, कैसे हो आप
0: जी? बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो हाँ ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी
0: जी। तो हाँ कुछ ते बोला दे कने तो हाँ दा ना क्या है जी?
1: प्रिया जी, साई ते बोला दे
0: जी। प्रिया जी, बड़े दिन बाद तो हाँ रेडियो गुंजन धर्मशाला जो याद किता ना जी।
1: हाँ जी
0: जी। ता क्या काम कार तो हाँ लगे या क्या करा दे?
1: क्या करना, कुछ नहीं, बरखा बहुत ना
0: जी। अच्छा, बरखा पौधियां, बरखा दा जेड़ा आनंद है सह लै दे?
1: हाँ जी
0: जी जी। तो किस तरीके ने बरसात दा मौसम दा जेड़ा आनंद है से तुहां लै दे? वैसे भी आहां दा जेड़ा मन है ना से बड़ा चंचल है ना जी।
1: हाँ जी।
0: कुछ ना कुछ आहां जो बोलता कि चाहे आहां चाय कन्ने पकौड़े बनाई लिए या कुछ भी नए नए पकवान जेड़े से बनाई लिए ना जी। जी तो तुहां भी बनाए कि नहीं बनाए?
1: हां मैं भी बना दे है जी
0: जी। अच्छा बना दे।
1: हां जी हां जी
0: जी। ता बड़ी अच्छी गल है जी। थोड़ा दिया जिंदगी है ना, जिंदगी जो एंजॉय करना भी जरूरी है ना जी।
1: हां जी
0: जी, क्योंकि काम तो हां हमेशा कर दे ही है ना जी। काम तो कभी खत्म नहीं होते ना जी। जी तो हम इस गल से सहमत हैं कि काम जेड़ा ना से कभी भी खत्म नहीं होते ना जी। कने इंसान जेड़ा से इस दुनिया ते चली आंदा पर काम फिर ही तिन्ने चले रहंदे ना जी। जी तो आज तो हम कुंदिया गीत सुनने जी प्रिया जी।
1: चल दुनिया किथे चली
0: जी, चल दुनिया। हेलो
1: चल घूम
0: जी। एक बार फिर ते गाने दे बोल जेड़े से रिपीट करने हो जी। जी अच्छा, गोरा
1: गोरा डाला
0: जी जी जरूर जी। तो हम दी जेड़ा फरमाइश है से तो हम तक पहुंचान दें जी। जी धन्यवाद जी जुड़ने वास्ते।
1: आपका भी
0: जी। तो श्रोताओं फिरी त्यहाँ अगे बढ़ने कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचानी है।

0: कानून दशमलव 2 MHz पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो हाँ सारे सुनिया ये गीत, इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए अशोक जी दी, तो जरूर तिना तक कहाँ ये गीत फरमाइश पहुँचाई कने तो हाँ सारे भी इंजॉय की थी। इसी कने अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने कर देना गल बात। हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार
0: जी। नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हाँ जी ठीक है
0: जी। तो हाँ कुछ ते बोला दे कने तुहंदा ना क्या है जी?
1: मेरा नाम है जी लवलीन
0: जी।
1: मैं नेहर चौक मंडी हिमाचल प्रदेश से बोला
0: जी। अच्छा जी, मंडी ते बोला दे।
1: हाँ जी
0: जी। तो क्या हाल चाल है जी मंडी वाले दे, क्या काम काज छेड़िया?
1: बस जी हाल चाल तो बढ़िया, काम काम कुछ नहीं, आज मौसम बदलवारी हुई
0: जी। अच्छा बदल यार है कि बरखा लगी हो?
1: नहीं जी बदल ही है
0: जी। अच्छा बदल ही है जी। तो धर्मशाला दी यहाँ गाल करिए ते तू बड़ी झमाझम बरखा लगी हो है जी।
1: जी बहुत बढ़िया कर लिया था
0: जी जी। धर्मशाला का मौसम वैसे भी ठंडा ही रहता ना जी।
1: हाँ जी हमारे तो गर्मी ही होती जी।
0: जी जी उस साइड मंडी वाली साइड गर्मी है
1: जी। मैं फोन किया था आज, मैं क्या श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि
0: जी,
1: तो कोई देशभक्ति जे गाना सुनाए दिया जी।
0: जी अच्छा देशभक्ति जे गीत ऐसे तो हम सुनने।
1: हां जी अटल बिहारी वाजपेयी आज पुण्यतिथि
0: जी जी। हां जी जी, जी, जी ता जरूर जेड़ा देशभक्ति गीत ऐसे तो हम तक पहुंचा दें जी। भरोसा, खुद पर भरोसा करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार होता ना कि अहाँ खुद पर भरोसा कर देना ताई अहाँ अपने जड़ा सपने न तिना दी जड़ा उड़ान है से भरी पाते न, तो उड़ान ताई अहाँ भरी पाते न जलू अहाँ खुद पर भरोसा कर देना, जलू अहाँ प्यागा जल्दी उठ देना अहाँ सी से जो निहार देना ता खुद ते अहाँ एक सवाल जड़ा से ज़रूर पूछ देना, या पूछना बनता भी है कि अहाँ कोई भी काम है मैं तो इस कम में जो कर सकती है या कर सकता है, ये तो हाँ जरूर अपने अंदर विचार जड़ा न से रखने न। विचार ता ही रखी सकते जल तो हाँ पॉजिटिव सोच करने रहते न, क्योंकि छोटी छोटी जड़ा कामयाबियां न सही आ जो अगे बढ़ने का जड़ा मौका है से दिंदियां न, पर निर्भर अहाँ पर करता है कि अहाँ किस प्रकार तिना दा फायदा लेंदे न या मेहनत करते न, या तो इस काम जो किस तरीके ने लगन कने मेहनत ने करते न से यहाँ पर निर्भर करते हैं। इसी कने हाँ अगले जेड़ा श्रोता तक ये फरमाइश पहुँचा देन से रहने वाले न इंद्रु नाग जी ते तिना जेड़ा फोन ऐसे कित्या था तिना दा नाम है राज जी, तिना दे जेड़ा दोस्त हैं तिना तक अहाँ ये फरमाइश पहुँचा देन कने तिना तक भी पहुँचा देन, तो हाँ सारे भी जितने बाकी श्रोता न सभी ज़रूर इंजॉय करा।

कानू दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने इसी कन्ने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर जहाँ कन्ने जुड़ सकते कन्ने यहाँ कन्ने गल बात चिड़े से जरूर करी सकते इसी गल बात कन्ने यहाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो जरूर अग्गे बढ़ाना है क्योंकि फरमाइशां दा जिहड़ा दौर ऐ से अहल बड़ा ज़्यादा है ते इसी कन्ने जरूर अग्गे बढ़दे न कन्ने अगली जिहड़ा फरमाइश ऐ से तुहां तक पहुँचांदे न।

दर्शकों इस गीत की फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए क्याणे थे कने तीना दा ना वे बिमलता जी तो ज़रूर तीना तक अहाँ फरमाइश पहुँचाई कने इसी फरमाइश के बाद अहाँ अगली जड़ा फरमाइश है से ज़रूर तुह तक पहुँचानी है तो सारे भी जड़ा इंतज़ार है से ज़रूर करा देने न कने इंतज़ार की जड़ा घड़ी है से बिल्कुल तुह वास्ते ख़त्म कर देना कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना दर्शो तो इस गीत की फरमाइश अहां तक पहुंची हो वे मंगल जी दी कने सरैने आले न चैतड़ हुए थे।

दर्शकों तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कहने तो जरूर रहा कोशिश यही रहनी है कि जेड़ा तुम दिया फरमाइशा न से जरूर अह तुह तक पहुँचान तो जरूर ये फरमाइश अह पहुँचाई जरूर तुह तक जेड़ा नाग रहा है से अहाँ पहुँचाई थे इसी कने अहाँ फिर ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगर बढ़ाना है कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचानी है दर्शकों फरमाइश अह तक पहुंची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना का नाम है ओम प्रकाश जी कने से रहने वाले न

आहबोला देने रेडियो गुंचन धर्मशाला ते कने तोहा सारे इस वक्त कार्यक्रम एंजॉय करा देन आपने रेडियो दो शशि कने दर्शोदा तो सारे जी पता है कि इस कार्यक्रम का जरा सफर है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक तो जरूर इस सफर जो और अगर बढ़ाना है कने अगली जरा फरमाइश है से तुह तक पहुँचानी है।

मनोरंजन धर्मशाला तो सारे कार्यक्रम एंजॉय करा रहे थे अपनी रेडियो दोष शशि कहने इसी कहने तो सारे अपनी रेडियो दोष शशि जो दिया अनुमति क्योंकि इसमें जड़े से उन्ह जो बोला था कि तुम्हें इजाजत जड़े से ले लिया तो जरूर इजाजत तुम सारे ते लेंदे हमेशा खुश रहा हंसते

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है, रहा।
2: चंदू के चाची को चांदी की रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ा।
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
1: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी?
9: अपनी वो कोने वाली मेज पे।
10: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
11: टीवी देखने बुलाएंगे?
12: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।
13: बुलाओगे ना शुक्ला जी?
14: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
15: क्यों?
14: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
16: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुँह नहीं छिपाना पड़ता।
17: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की।

0: एक कदम स्वच्छता की ओर।
1: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बता ही दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
2: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
1: मैं तो बुरी थी।
3: पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये नए पुराने गीत हर शाम हर दिन हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को जहाँ हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: घर सूर्य घर।
2: आज स्कूल में क्या सीखा?
3: मछली जल का रानी।
2: जल का नहीं, जल की।
3: जीवन उसकी पानी
2: उसका।
3: पापा पापा, दूध उबल रही है।
4: उबल रहा है। रहा।
3: चंदू की चाची को चांदी की रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ाया।
5: छताई।
3: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
6: बेटा खाया नहीं, खाई।
3: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
2: चली गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
4: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
3: वो तो आ गई।
2: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: क्या देना? नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी?
9: अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
11: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।
12: बुलाओगे ना शुक्ला जी?
13: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
12: क्यों?
13: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
14: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बता ही दो, एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा?
18: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
17: मैं तो बुरी।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा और आऊँ आरजे सचिन कपूर हाजिर हुआ कार्यक्रम लेकर हिंदी अपनी गप्पा। दिन तो आ रहा और सब घरे भुनैन त्योहार के श्रोताओं सो फैमिली वास्ते भुंदा है और फैमिली वास्ते है त्योहार के सुखर दिन है ना। अमूमन नहीं है बंदा ना कि आज त्योहार है त्योहार है या तो बहुत सारे काम किया सो सोची रख रहे बंदन या अगर का फैमिली ट्रिप किया सो बनाए रख रहा बंदा है ना। कचो कि नॉर्मली हर गलत हो आके दो ही मनों किया सो जॉब जरूर कर दे हिन और मेन लिया है बनाए रख रहा बंदा कि त्योहार हो किया सो असु फलानी जगह घूमना गाना या फलानी जगह किया सो जरूर गाना है ना। त्योहार रहा दिन और यह बिल्कुल लाइव इन तो इस लाइव कार्यक्रम में तो सब भी जरूर है जुड़ी सकते हैं इन श्रोताओं 7018 8179 पर नंबर आक मुके फिर ही तू हो गया हूँ शेयर करनो आ साझा करनो आ 7018 8179 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी किया सो साझा कर सकते हैं। यह गल्ला रा खास ख्याल रहे श्रोताओं की जानकारी की सो साझा करने लायक जरूर बुआ जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक जरूर बुआ। तो बहरहाल धर्मशाला रा मौसम आज बेगले ने पैर भी ठीक रहे हो श्रोताओं लेकिन दिन रहे वक्त की सो काफ़ी तेज तरार बरखा की सो धर्मशाला मंच हेरने जो मुड़े है और अब जो रे गल करिए श्रोताओं तो मोस्टली 22 डिग्री रे आसपास किया सो टेम्परेचर हा इस समय श्रोताओं और इसी सो की नमी भी किए श्रोताओं सो 85-90% रे आसपास जरूर हा। यह धर्मशाला रहा इस समय रहा मौसम था बिल्कुल लाइव कार्यक्रम और तो है इस लाइव कार्यक्रम में जरूर जुड़ सकते हैं 7018 8179 पर नंबर आक मुख्य गोएं गोएं है जरूर बलिंद 7018 8179 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं श्रोतों और श्रोतों बल देना चिंता और अच्छेता अंदर कोई ज़्यादा फर्क के या ज़्यादा अंतर के आसो बिल्कुल बिना बुंदा चिंता और अच्छेता मंच मात्रा की बिंदु रहा फर्क है और सिर्फ इंसान रे जीवन में भी कुछ इस प्रकार सो गे किया सो व्यतीत बुंदी हा चिंता। अगर तो है ज़्यादा चिंता कर ले श्रोतों बहुत अत्यधिक चिंता कर ले या बहुत अत्यधिक सोच विचार कर ले बहुत नुकसान बुना तुंदा है गल्ला जो जरूर समझा कि तुंदा किया सो बहुत नुकसान है सो जहने भी कोई भी गल है ना जाए सो ऑफिस रे या जाए सो घर आ रहा जाए सो बार आ रहा जो जड़ी गल बुझी तो ठीक मुकाए करी गया सो नेक्स्ट स्टेप किया सो लेना चाहता सो लाइफ में है ना आगू किया सो बढ़ना चाहता। अगर तीन अंदर ही उलझी रहा सो तो जिंदगी की सो बहुत लंबे और न जाने कितना ही पड़ाव अब जो जिंदगी रह गए ना सो इस प्रकार रही ने है ना। तो ये जी इंजॉय कर देना आज कड़ा संडे आरजे सचिन कपूर सोगे बने रहा आसु सोगे लाइव कार्यक्रम चल रहा है 5 बजे तक रहा सू तुसू सोगे सोगे रहना है। आइए जी तो आज कड़ा संडे इंजॉय कर देन आरजे सचिन कपूर सोगे

0: चलिए श्रोतों, कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के अंश चल रही और बहुत ही प्यारे दे गीत के सो है हुणो श्रोतों गोपाल शर्मा और विजेंद्र आचार्य री आवाज़ मतबल देने श्रोतों की एज इज जस्ट अ नंबर। सो अंग्रेजी में कहावत भी है कि एज इज जस्ट अ नंबर, यानी कि उम्र के सो सिर्फ एक नंबर काउंट कर देना है। तो एरा जो गोपाल शर्मा हिन और विजेंद्र आचार्य हिन ए इतनी ओल्ड एज में गिच करी कि आ इतने मतलब बुढ़ापे में गिच करी कि सो फेमस भूगन है ना। तो फेमस भूनेरा कोई उम्र नहीं आ, और फेमस भूने वे सोगे सोगे श्रोताओं और भी किसी गल रही कोई उम्र नहीं यार। तो सो जो खरा लगता, जो अपने आप जो अच्छा लगता सो करू करा। अपनी लाइफ जो कि सो बेहतर तरीके होगी जीना की श्रोताओं, सो जरूर सीखा कर जो कि जिंदगी ना मुलने दोबारा श्रोताओं। जिंदगी में चलिए दुख परेशानी और दर्द के न सो इन द संग हिन, लेकिन इति सोगी इति मन छ असु के सो मूव ऑन करना। मूव ऑन रहा मतलब कि थोड़ा करी आगू किया सो बढ़ना असु सभी वास्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यह है कि कट घरे अंदर के असो फंसे रह ले सोते तो फिर दुनिया के गुम ले है ना। और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत हसीन है। थोड़ा करी अपनी सोच में बदलाव लेने रे की असो ज़रूरत है, और सोच में बदलाव तो आ सकता कि जहने तो है कि सो हर चीज़ रेफेस लगे ना सो प्यार होगी करने सोता हूँ। और बल देना कि नफरत सोगी सिर्फ दुश्मनी के ना सो बढ़ती हिन सोता हूँ, लेकिन प्यारा होगी किया सो बहुत दोस्ती भी भुनती हिन, प्यारा होगी किया सो बड़ी बड़ी जंग भी किया सो जीती सकते हिन ऐसे। सो मेरा तो ये मनना हा सोता हूँ और मेरी थिंकिंग किया असो हमेशा तो ये बल दे कि प्यार होगी कि असो है हर जंग के सो जीते सकते न, और हर किसी के असो एनालाइज कराई सकते इन चीज़ है ना। तो फिलहाल इन अगले श्रोता असो की कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: हाँ जी नमस्ते नमस्ते, ठीक ठाक ना?
1: बढ़िया जी बढ़िया।
0: और करे लग रहे
1: बस लग रहे जी तेरे गाने होना।
0: कौन बलून देन और कड़ी थों बलून देन?
1: हाँ जंगो गाइड बलून ना सिद्ध बाड़ी थों।
0: अच्छा जंगो गाइड सिद्ध बाड़ी थों।
1: हाँ जी
0: हाँ जी। अच्छा ता कौन देने की थोड़ा पसंद कर ले तो है?
1: कीत जी है रिमेल सिंह हरी आवाज जम जमो जाना बोल रहे मनी में।
0: हाँ क्या बात है रुमेल सिंह री आवाज माना जी।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: मोबे गाना भोले रे मणि महेस बैरिया भाड़े हो।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: चलिए ठीक है। और नोएता जी हुनाई दे कुछ
1: बस जी। नोएता जी के हुन नहीं आवे, बरखा है ना थोड़े दिन बरसावाला इस तंग करने न।
0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी बाकी ठीक है ना।
0: चलिए ठीक है जी, धन्यवाद और जरूर हुन ले तो सुए गीत आया ना जी।
1: ठीक है जी ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। चलिए श्रोतों कार्यक्रम जो है थोड़ा करे आगू और बढ़न दिन, और तो सब श्रोता बिल्कुल लाइव इस समय आरजे सचिन कपूर सोगी बन रहे हैं। तुम्हारा रे दिन है श्रोतों स्पेशल डे फॉर आवर फैमिली, स्पेशल डे फॉर आवर फ्रेंड्स। जरूरी भी आना है कि यारा दोस्त होगी घूमना भी कर, जो कि पूरा हफ्ता है सब की असो जॉब में इतना बिजी रहन दिन है ना, जो कि नौकरी भी ज़रूरी ना, अगर कमाना घर चलाना खाना कपड़े लाने जूते लाने ना। तो कमाना ज़रूरी है, नौकरी भी ज़रूरी है, और पैसा भी ज़रूरी है भाइयों। बगैर पैसे तो कुत्ता ना बात पूछता, ये गल सियाने कोई गल तो थोड़ा ना बल रहे है ना। तुम्हारी जेबा पैसा बोला ताई तुम्हारी बात की सो पूछी सकते हैं। तो सब जरूर इस स्पेशल दिन में कॉल कर सकते हैं शो 7018107091 पर। नंबर एक मौके फिर आऊँ रिपीट कर लूँ 7018107091 पर। तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं। बहरहाल चल देना है सब, और बाकी मैं श्रोता बोल देना कि इंसान जाने अपने आप जो सोच लिया ना कि हम बहुत ही दुख है या सब चीज़ आगे सो बुरी मुंजो सोगी बुच्चू कर दी। मैं कस की वास्ते बहुत कुछ कर रो, मुंजे वास्ते कोई इंसान की सो कुछ ना करूँगा, उल्टा मेरा बुरा करूँगा। तो सिर्फ भगवान रा ना लिया, उस शंकर रा ना लिया, केलंग वजीर रा ना लिया, मराली माता रा ना लिया, और सिर्फ ये सोचा कि मुझे भगवान यही शक्ति दिया कि हम मनु रखे सुखरा ही कर सकूँ, कसी रहूँ बुरा ना कर सकूँ। और जो तुसो कि जो बुरा करू करता है सो तो सेरे कर्म किया सो अपने आप लिखियो करते हैं, है ना। और ये ना सोचना सो तो ये एक स्टोरी भी है, शायद तुसु में से बहुत सारे मनु हैं गरुण पुराण की सो पटुरो बुला था तिया भी ये लिखू रहा। और जो बुद्धिजीवी मनु मुझे इस समय होनो करते उन्हें तो इन्हें पता होना कि इनके ना शोल्डर में कहानी है ना कि इनके शोल्डर में गया सो दुई पंछी बेखुरे बनते दुई पंछी गया सो आखिन दे खरे कर्मा जो नोट करता और आखिन दे बुरे कर्मा जो नोट करता है। तो ये डिसाइड ये मत सोचा किया है आज किसकी वह बुरा कर लियो था असु बद अंदर इनका खरा बुझ गाना या आज जाए किसकी वह बुरा करू कर देन तो इनका बद ना खरा बुझ गाना ना शो तो है जो करू कर देन प्रतिदिन करू कर देन और प्रतिदिन कस की गाली दिच्छू कर देन प्रतिदिन कस की बुरा भला बल बुरा भला करू कर देन बल्लू कर देन सो सब की सो राइट डाउन बुच्छू करता हा सो सब लिखियो करता हा। ये जने सो नदी इनी ना पार करने जने सो मारे गाना तो सो नदी के चलिंदी पार करने वाले तरी लगना भाइयों पता फिर कितनी भी है सो बंदे सो शंकर भगवान रा ना लिया और मनु रखा रखा रहा।

श्रोता एफएम ब्यान्ड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुन्जन तो है ट्यून कर रहा और हाँ सचिन कपूर अब बिल्कुल लाइव फेस समय तुम वीडियो सेट में और ऐप रह जरिए तुम ऐप मंच भी श्रोत तो सब श्रोता जरूर बने सकते हैं 7081879 पर कॉल करी करी फिलहाल श्रोतों है चल दिन थोड़ा करी और हगूँ और अक बहुत ही प्यारी दे स्टोरी आ सो तुस तक रह जरूर पहुँचन देने लेकिन तह स्टोरी जो उड़ने वास्ते थोड़ा करे इंतजार जरूर करे तो नागपंचमी या शोतों तो जरूर

शोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव होने कर देने अपने अपने रेडियो सेट में तो श्रोता तो है सब श्रोता जरूर जुड़ सकते हैं इवन कि इन दैक श्रोता से कॉल करू कर देती है माफ़ कर तुम देख।

कॉल किया सो एक्सेप्ट ना पूछी सकिया कछु क्या है गीत ब्रॉडकास्ट करी था तो और तो है आप पूछू कॉल किया सो करिया ता चलिए जी ता स्टोरी री किनारी तैयार इन तो सब श्रोता है लेकर चलते हैं तू सब भी श्रोता जो स्टोरी री किनारी तो सब भी ये ट्यून कर रहे इस समय वेड़ी गुंचन धर्मशाला हो रहा हूँ सचिन कपूर का तुंदा अपना आरचे वीडियो जो कि आइए कार्यक्रम जो हगो ब्रंदन छोतों और हक प्यारी दी स्टोरी रिकनारी किया सो तुसु सब भी जो लेकर ही चलते हैं छोतों ता छोतों अकी बना मंच ना दुई भाई भाई के थी है सो बेखुरे थी है दोई पक्षी थी है यानी कि भाई भाई यानी कि दोई कबूतर के थी है सो बेखुरे थी है अकी बना मंच और तैयारी धोने रही अपुओं की सो बड़ी गहरी गलबात की सो चल रही थी बहुत ही गहरी गलबात की सो अपू माँ चल रही थी भाई भाई रे ती अक मनु इंदा हा ये दोई कबूतर थी है मनु इंदा और अक भाई दुए भाई सारा करता कि भाई पचुओं की सो मनुआ और चलो उड़ी चलते हैं थोड़ी वेडे बेखुरे असू शिका ये शिकारी बुला था इस असू की असो मारी देना हा दुआ भाई बलदा सो थोड़ा सा बोला भी तो सो बलदा कि ना मारदा मारने वाले वे जो मतलब अक पहनावा बुंदा शिकारी री गल कुछ लग बुंदे मतलब बलदा कि सेरा शिकारी थोड़ा ना लगू करता ये तो कोई सज्जन मनो लगू करता है ना इतना बढ़िया नहीं सूट बूट लो रहे था ये तई गुम करता बुना इस थोड़ा ना मारना है ना शिकारी नहीं है बल्लू तीन ये दुईया दुए भाइये भी किए सो सेरे गल मन ने लिए और बल्लू चल ठीक है तो बल्लू करता तो ना बूना शिकारी है ना थोड़ी करी और रेडे आ और तीनिया किया सो अपने साइड बैग थों किया सो शतों तीर कड्डो और तीर चलाई तो और कबूतर लगे गो और सो कबूतर तड़पदा किया सो थले पे गो शतों अब जाने सो थले पे गो शतों ता फिर दुए भाइयों बड़ा दुख हुआ और सो किया न किया अपनी जान बचाई कर गया सो तड़ियों चली गो उड़दा उड़दा रुंदा धुंदा सो तस वैजे रे राजमहल में पुजी गो शो तो राजमहल में पुजने थो बाद तिनिया राजा थो किया सो गलबात करी और राजा रे अगो किया सो पूरी कहानी रखी पूरी व्याख्या रखी और राजा बल्ला तू बल कि सो किन किन होसदा तू क्या क्या हो तू बोलो सो बहरूपियत हो सो बहरूपियत हो कि और आजकल यह दुनिया मैक्सिमम मन हो गया सो बहरूपियत है बुंदे इन शतों है ना जो मन अंदर राम राम हरे कृष्ण कर देन और बारह सो मनु रह गया सो बुरा कर देन ता बोलो सो बहरूपियत हो लिवास दसी तक ये लिवास तीन ये लूरत हो तो अपने थोड़े करे दिन के सो जरूर लगे और जी मोड़ो सोते हैं तस दुए कबूतर हद्दू बोलो तेरे भाई रा शिकारी की सो मुड़े गो और बल तू इस अच सजरा ऐलान किया सो तुद करना तो बल की इसी होगी क्या करना मारना इसी हो या जो सजा देने अज तुद देने तो दुए भाई है बल्लो बल्लो वे मेरा भाई था मरे गो बल्लो तस तईना ने है ना वापिस थो नहीं ना दस बड़ी नम हाखरी थो बल्लो कि मेरा भाई मरे गो तस वापिस थोड़ी नहीं ना लेकिन आऊँ ये चाहता कि इसी ओ सिरे शिकारी आ रहे शिकारी वाले लिवास में किया सोए घूमा ताकि असु ही जितने भी पशु पक्षी हिन तीनों पता लग गच्छा और सो अपनी जान की सो बचाई सकन ये झूठे लिवास पहने करे किया सो असु पशु पक्षी जो किया ये गुमराह ना करा झूठे लिवास में किया सो असु जो किया सोए धोखा ना दिया दशतों एक कहानी भी कुछ असु पर तुसु पर निर्भर कर दिया और ये कहानी भी कुछ असु ये सिखंदी हा कि जो झूठे लिवास में व्यक्ति इंदे आस पास इन इंदे सोगिन तिया थो थोड़ी करी दूरी की असो जरूर बनाई लिया जी बिल्कुल अपना सो ये शतों सो जो कि
दुख आंदर तुंदे सोगे खड़ुआ अपना सोए अशो तो जो हॉस्पिटल मा तुसु सोगे हा अपना सोए अशो तो जो दुखारी घड़ी मा तुसु सहानुभूति दिच्छु करदा और तुसु अच्छा मार्ग किया सो दसु करदा हा। ए स्टेटस मा राम राम और अंदर थों काल है ये लिवास आजकल हर कसी है पहन रहा ऐसा कलयुगी दुनिया में ता हर कसी हर त्री है बंदे की ऐसा पहन रहा है शो तो ता आउं ता सिंपल ही निकाल जानो और बालनो कि अपनी लाइफ में मस्त रहा अपने आप इरा इडी कोई कसी हूँ खुश नहीं है शो तो है ना सो अपनी लाइफ में मस्त रहा और अपने परिवार सो की खास कर मस्त रहा कोई भी गिला शिकवा बंदा शो तो परिवार में आपस में बही करी के ऐसो सलाह मशवरा करी करी अकी दुए भी गलती एक्सेप्ट करी करी कार्यक्रम जो हगो बढ़ाना पैंता रिश्ते जो के ऐसो हगो बढ़ाना पैंता बोलते ना कि अगर गल जरूरी है तो रिश्ता बोलेगा अच्छा और अगर रिश्ता जरूरी है तो फिर गल बोलेगा अच्छा दोनों काम में से ये दोनों काम तो ना चले सकते कि रिश्ता भी निभाना और रिश्ता भी निभाना और गल भी याद रखने ये तो मुमकिन नहीं है। सो श्रोतों कहानी रस आ रहे बलदा कि लिबास जरूर पहना लेकिन सोई लिबास पहना जो तुंदा हा यानी कि अगर तुंदा जो नेचर आ जो तो है अपने आप जो अच्छा मंदन तो सोई अच्छा कि सो दुनिया रे सामने भी रखा है ना ये नहीं है कि है बारे राम राम और अंदर सोमन और बुराई करी ली सोमन वो फटकारी ठुकी ली सोमन वो गाली ठुकी ली ने और बारे बंधन किया है तब भाई भगवान ने रे पुजारी ने सो असल में भगवान ने रे पुजारी बना और भगवान तो ताई खुश बंदा की जहने तो है हर गस्सी रखरा करन प्रकृति जो सेफ रखन पेड़ पौधे लगान पशु पक्षी जो खुश रखन और सियाने जो खुश रखन भगवान खुश रखा। बहरहाल हाँ हूँ सचिन कपूर है और कार्यक्रम में समय दी अपनी गप्पा के ना सो बिल्कुल लाइव चल रही हिंद तुंदे वीडियो सेट में हाँ ये कार्यक्रम जो थोड़ा करी और हगू भड़न दे हिंद श्रोतो और लेकर चल दे तू सब भी श्रोता जो इस गीत तारी कनारी बने रिया आज सचिन कपूर सो गे गूंज अपने बन रे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

0: पलटे शोतों गीत अंदर भी किया सो बड़ी चीज गुथुरी बंदी और गीत अंदर भी किया सो ताई लिखी दी ने जो बीतुरी बंदी है ना ताई लिखी दी ना जहने बीतुरी बंदी और बहरहाल कार्यक्रम जो आगो बढ़ा ना है इंदे अगले श्रोता सो की कनेक्टेड है। नमस्ते जी। हेलो नमस्कार जी। हेलो नमस्ते जी।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: नमस्ते सर जी। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। नमस्ते ठीक ठाक ना?
1: हाँ जी सर जी ठीक ठाक जी।
0: और करे लगुरन?
1: बस सर जी तो सांदे प्रोग्राम सुना दे।
0: अच्छा
1: हाँ जी सर जी।
0: अच्छा जी कौन देना गीत होना पहले इधर से दिया
1: मिंजो पहाड़ी भजन सुनाई ने सर जी पम्मी ठाकुर दी आवाज च श्याम प्यारे बंसरी वाले।
0: श्याम प्यारे बंसरी वाले है ना जी?
1: हाँ जी पम्मी ठाकुर दी आवाज सर जी।
0: अच्छा तो नोएडा जी दस अपनी इलाके री जी।
1: बस नोएडा जी है सर जी बरखा कल दी होवे नहीं सर जी।
0: अच्छा ना मुझ
1: हाँ जी बाकी अजय राती कर लिया भी जाना।
0: हाँ ज्यादा होना रून पिटन।
1: हाँ जी फिर रून पिटन ज्यादा होना सर जी नुकसान भी ज्यादा होने।
0: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ जी हाँ जी सर जी
0: तो क्या करना नुकसान तो झेलना पौने ना
1: झेलना पौनी सही गल है सर जी
0: को बहना कर लिया।
1: हाँ जी हाँ जी सर जी।
0: चलिए
1: बाकी तो सुना दे नोई ताजी सुना दे तो सर जी अच्छी अच्छी जानकारियां दिया दे।
0: धन्यवाद जी धन्यवाद। तुंदा प्यार है तुंदा आशीर्वाद
1: है। चलो बैठे बैठे मिली आनी जानकारियां सर जी।
0: धन्यवाद जी ना चीज जो इतना प्यार देने वास्ते इतना मान सम्मान देने वास्ते थैंक यू सो मच
1: सर जी। धन्यवाद पूरे स्टाफ का धन्यवाद सर जी इतना मेहनत कर दे तो सर जी प्रोग्राम में
0: जी।
1: हाँ जी सर जी।
0: चलिए जी थैंक यू सो मच इन द मेहनत तुसू हुस दिया।
1: हाँ जी हाँ जी सर जी
0: जी। चलिए ठीक है जनाब जरूर होने ले तुंदी पसंद में गीत।
1: धन्यवाद सर जी धन्यवाद। नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के नो चल रही है ताइए कार्यक्रम जो आगो बढ़ते हैं श्रोतो और कार्यक्रम मंच लेकर चलते ना इस भजन री कनारी श्रोतो तू सभी जो

श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर है वेड़ी गुंजन और हूँ सचिन कपूर। कार्यक्रम इस समय बिल्कुल लाइव चल रहा है तुंदे वीडियो सेट में एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच। श्रोताओं आज त्योहार दिन और त्योहार दिन की सो बड़ा स्पेशल बुंदा है ना गर्म मंच है सोचने की बड़ा कुछ सोचने गर्म मंच क्या बोलते हैं क्या क्या सोचना है गर्मंत श्रोतों है सोचता दोस्त है या परिवार सोगे की सो मिली करे आज त्योहार मनान है ना पिज्जा खान पास्ता खान गोलगप्पे जैसी कई मज़ेदार चीज़ा खाने वगे सो अज दिल बनता है श्रोतों स्ट्रीट फूड बुक संजा गया संजा बुंदी सो बाहर निकलन अपने शहर री कसी मशहूर चाट या मोमोज वाले मोमोज जड़ी बनदन तड़ी गिची करी बैखन यार दोस्त होगी गप्पा मारन हंसन खेलन है ना या बालकनी भी छत मार के सो बढ़िया कड़क चाय या कॉफ़ी वे सोगे कि सो पुरानी याद आ गया ना सो परिवार सोगे या फैमिली सो परिवार फैमिली या दोस्त सोगे क्या सो ताज़ा करन है ना इस प्रकार रा त्योहार किया सो हर कोई चांदा के संजा बुंदे सुहाने मौसम में बाइक या कार में किया सो लंबी ड्राइव पर है निकली गान दिल तो बड़ा कुछ चांदा शो तो लेकिन दिला रह गया दिला तो बस चाहना है ना करना तो तुस हुआ कभी कभी दिल बनता कि किसकी शांत जगह की जिक्र किया सो बई गान और अपने आप जो एनालाइज करने की यह किया सो जिंदगी में क्या कुछ करो हा और है अपने आप जो क्या पसंदीदा बनाई सकते हैं अपने आप जो क्या है खुश किया सो रखी भी सकते हैं और इन दी वजह तो कोई दुखी ना बोए भी है कि करी सकते हैं तो मन मैं बोलूँ ना मन के मन तो कुछ भी किया सोचा ही लेंदा और कुछ भी किया सो करी लेंदा क्योंकि ईश्वर तो जिंदगी बड़ी नमाणी है ना और जिंदगी मन च बड़े ज़्यादा के ना सो उतार चढ़ाव इंदे हमेशा बोलूँ कि लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव के ना सो इंदे इन शो तो लाइफ अक अक जी नहीं किया सो ना चल दे कसीरी भी बहरहाल है चल दे थोड़ा गरी और हगूँ लाइफ अक नहीं ना चलती पर लाइफ चलाने की सो जरूर पेंदे आ तो ये इंजॉय करते क्योंकि संडे रहा दिन है शो तो और इतवार रहा दिन हम बल्लू करते कि इंजॉय करने रहा दिन बंदा खुश रहने रहा दिन बंदा क्योंकि पूरा हफ्ता था सो नौकरी करने फिर है ना जॉब ही करने और जॉब में तो पता हर किसी को अपने अपने लेवल रहा स्ट्रेस किया सो जरूर रहता तो चलिए इंजॉय करते इस गीत सोगे बने रहे तो ये सब रेडी गुंजन धर्मशाला सोगे गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रहे

चलिए शो तो वक्त रहा पता ना लगता शो तो और बल देने की वक्त सोगी किया सो चलना पैंदा हा और वक्त सोगी चलना भी पैंदा हा और वक्त सोगी किया सो हर चीज़ा खरी लगती टाइम टू टाइम है ना। सो तो ते नागपंचमी आक मौके फिरी तुसु सभी जो नागपंचमी री बड़ी बड़ी बधाई भून और दोते जरूर नाग मंदिर की सो जरूर गान दोते सोमवार भी हा शिव जी भगवान रा दिन भी हा और दोते आई थिंक लास्ट व्रत बुना है ना शशि पुरोहित इतों बाद व्रत तुते सोमवार है मोटी गल तो जरूर तो है जरूर गान है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद छो तो और समय सोगी गाना पैंता हा तब मेरे समय पुछगो तुस सब भी तो अलविदा लेने रा तुस सब भी जो टाटा बाय बाय बलने रा गंदे गंदे बलना चाहो माँ बूढ़े खुश जरूर रखा तीन तो मुट्टी दौलत कोई भी नहीं है सर दुनिया मंच और सो खुश न तो है खुश न अगर तू सोच ले तुंदे माँ बड़े दुखी तुंदा जीवन यापन करने का कोई फायदा नहीं है तुंदा जीने का कोई फायदा नहीं है तुंदा कमाने का कोई फायदा नहीं है सो माँ बड़े जरूर खुश रखा तीन रोला मत और अगर सो रो तो तेरा मतलब कि तुसु अंदर बहुत कमी हैं बहुत ज़्यादा कमी हैं ठेरी वजह सो दुखी बुझू करते हैं। आऊँ सचिन कपूर ले लेनु तुसु तो इजाज़त शो तो हंसते रहे मुस्कुराते रहे और थोड़ा कर समय और ले लेनु जो कि हंसदा मुस्कुराना कि सो जरूरी जिंदगी मन शो तो आऊँ भी गंदे गंदे मुस्कुराऊ करता हाँ कजो कि जो है चंद दिन ती सब कुछ ना बुंदा कुछ चीज़ा कहने सो भगवान ने पुट्ठी भी छड़ी देना चाहते हैं है ना। सो तो है कि चांद कहते बुलडरे कहते मर्जी तो ही सब कुछ बुझ गया था फिर सृष्टि की सो इंसान रे उती मतलब सृष्टि की सो इंसान रे बलने पर ना चला सो है कदी कदी ये भी सोचे लेंदे कि यार आऊँ फलानी गल ही करूँ करदा मुंजो गिना बुच्छू कर दी मुंजो गिना कौना बुच्छू कर दी कौना मनु कर दे कोई ना मैं जो कि खराब उच्चू करता था सृष्टि शो तो इंदे बलने पर ना चलने है ना। फिलहाल हम सचिन कपूर वे ले लेने इजाजत हंसते रहे मुस्कुराते रहे और खुश रहे तंदुरुस्त रहे अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखा शो तो नमस्ते धर्मशाला।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ाया।
4: चटाई।
2: ओहो, दादू इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे।
9: दीवार पे लगाने वाला ना है टीवी।

0: टीवी देखने बुलाएंगे?
1: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
2: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
0: क्यों?
2: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
3: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
4: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
5: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
6: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
5: मैं तो बुरी।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

91.2 FM पर आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। शाम के 6 बज गए हैं श्रोताओं, और ये कार्यक्रम, ये समय रहता है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम

कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा और सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही श्रोताओं, जितने भी श्रोता हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप सभी अपने अपने काम पे कीजिए और साथ ही रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ भी जुड़ जाइए, क्योंकि ये समय रहता है आपके लिए मनोरंजन का, जानकारियों का। तो कार्यक्रम में बातचीत के साथ मनोरंजन के लिए प्यारे प्यारे गीत भी हम लेकर आए हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आज आपके साथ होने वाली हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत पहले कर लेते हैं इस गीत के साथ। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम में सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और शाम के 6 बज चुके हैं श्रोताओं, और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय रहता है हमारा, यानी कि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आज आपकी रेडियो दोस्त सुषमा, और श्रोताओं सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। खैर, मौसम ख़राब है और हम ये तो नहीं कह सकते कि दिन अच्छा गया होगा, क्योंकि पिछली रात को बहुत तेज़ बारिश जो है वो भी हुई है। लेकिन फिर भी श्रोताओं, कहते हैं ना कि जो समय हमें मिल जाए उसे हमें इंजॉय करना चाहिए, और जो भी परेशानियां या दुख जीवन में आ जाते हैं उनसे निकलने की कोशिश भी करते रहना चाहिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आज का विचार हमने नहीं लिया, तो अब चलते हैं आज के विचार की ओर। ज़िंदगी में एक दूसरे के जैसा होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल श्रोताओं, एक दूसरे के काम अगर हम आ सकें तो इससे बड़ी बात क्या होगी। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर, और आज कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, लेकिन फिर से आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारे से गीत की ओर। और अभी जो आपने गीत सुना था कार्यक्रम में, वो हमने लिया था जीत फिल्म से, सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना। और गीतों की इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत, दूर का राही। इस फिल्म का गीत श्रोताओं अब आप सभी के रेडियो सेट पर किशोर कुमार की आवाज़ में।

91.2 MHz पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम में हमने अभी आपको सुनवाया दूर का राही फिल्म का ये गीत, और गीतों की ये माला जो है आज भी हम पिरो कर लाए हैं आपके लिए श्रोताओं, और आपके मनोरंजन के लिए ऐसे प्यारे प्यारे गीत हम लेकर आते हैं। और श्रोताओं, आज संडे का दिन था और आज सभी को छुट्टी थी, आपने छुट्टी को एंजॉय किया होगा, और कल भी छुट्टी है, गवर्नमेंट स्कूल्स में छुट्टी है, क्योंकि 15 अगस्त को इस बार छुट्टी नहीं दी गई थी, तो उसकी छुट्टी कल है। तो बच्चे जो हैं वो ज़रूर खुश होंगे, क्योंकि जब दो छुट्टियां इकट्ठी आती हैं तो बच्चे मस्ती करते हैं। खैर, बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन घर के बड़े जो हैं वो भी थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, जिसका समय आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे होते हैं जो नए या भी अभी हमारे साथ जुड़े होते हैं। तो कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का जो समय है श्रोताओं, वो शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का रहता है। और श्रोताओं, आज 16 अगस्त है, पिछले दिन 15 अगस्त का दिन आप सभी ने सेलिब्रेट किया, और ज़रूर आज़ादी का जश्न आप सभी ने मनाया होगा, तिरंगा लहराया होगा, राष्ट्रगान भी गाया गया, स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया, और सबसे बड़ी बात, वंदे मातरम जो हमारा है उसे हमने कल पूरा सुना और गाया भी। श्रोताओं, स्कूलों में भी हम लोग ये वंदे मातरम जो गीत है वो गाते थे, लेकिन सिर्फ एक ही पैराग्राफ जो हम गाते थे, और वही हमें आता भी था, क्योंकि हम लोग रोज़ रिपीट करते थे स्कूल में। लेकिन अब जब वो कल पूरा बजाया गया, गाया गया, तब हमें सच में गर्व महसूस हुआ। और इन्हें कहते हैं ना कि याद भी होना चाहिए हमें, और इनके प्रति सम्मान भी हमारे दिल में होना चाहिए, जो कि कल हमें देखने को भी मिला। लेकिन श्रोताओं, आज 16 अगस्त है, और आज थोड़ा सा अलग हम बात करेंगे। आज हम करेंगे आज़ादी का हिसाब किताब। अब आप ये कहेंगे कि कैसा हिसाब किताब? देखिए, हमें आज़ादी मिल गई है 15 अगस्त को, हमने उस दिन को सेलिब्रेट किया और हर साल करते हैं, लेकिन वाकई में आज़ादी क्या है? क्या हम आज़ादी का जो जश्न है वो सच में दिल से मनाते हैं, या बस एक दिन या एक तारीख है जो हम याद करते हैं? कहीं ना कहीं समय बहुत बदल गया है, आज़ादी की जो परिभाषा है वो भी बदल रही है। तो श्रोताओं, आज ज़रूर इस पर बात करेंगे। आप सभी कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, लेकिन वो जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हम यही कहेंगे, जुड़े रहिए, और जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएँ। 88.4 MHz पर श्रोताओं, हमीरपुर के डटवाल की आवाज़ पर भी आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, और अगर हमीरपुर के श्रोता भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं तो उन्हें भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। तो श्रोताओं, बातों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर से कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे एक और प्यारा सा गीत। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को आप सभी के अपने रेडियो सेट पर।

श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत और उम्मीद करते हैं आपको ये गीत ज़रूर पसंद आया होगा। श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में जैसे कि हमने पहले भी कहा कि आज हम बात करेंगे आज़ादी का हिसाब किताब। आज़ादी का जश्न हम सब ने मनाया कल और बड़ी ही खुशी से मनाया, सब ने तिरंगा भी लहराया, लेकिन श्रोताओं बहुत सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में दिल में जो है वो आ ही जाती हैं और सोचने पर हमें मजबूर कर देती हैं। लेकिन श्रोताओं हिसाब किताब जो है वो पैसे का ही नहीं बल्कि उन उम्मीदों का, उन सपनों का, उन जिम्मेदारियों का जो आज़ादी के साथ हमें मिली थी। 1947 में श्रोताओं हमें राजनीतिक आज़ादी मिली, लेकिन क्या आज़ादी का मतलब केवल विदेशी शासन से मुक्ति था? बिल्कुल नहीं। आज़ादी का मतलब था हर बच्चे को शिक्षा का अवसर मिले, हर युवा को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, हर किसान अपने खेत में सम्मान से मेहनत कर सके, हर महिला सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करे, हर नागरिक को अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो। लेकिन श्रोताओं फिर से हम आपको लिए चलेंगे सोशल मीडिया की और, खबरों की और, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं और सुनते हैं। आज अगर हम देखें तो कहा जाता है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं, लेकिन कहां तक ये बात सही है? महिलाएं तो महिलाएं हैं, लेकिन छोटी छोटी बच्चियां जो शायद अभी चल भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, माँ की गोद में ही रहती हैं, वो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। वो महिलाएं जो कहीं जॉब करती हैं, पढ़ती हैं, कहीं काम पर जाती हैं, वो रात में तो क्या दिन में भी सुरक्षित नहीं है। वो महिलाएं जो घर में एक परिवार को चलाती हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दहेज के लिए आज भी प्रताड़ित की जाती है, आज भी उसे घर से धक्के मार कर निकाला जाता है। किस लिए? एक बड़ी गाड़ी के लिए, एक बड़ी अमाउंट के लिए। सोचिए श्रोताओं, देश तो आज़ाद हो गया है लेकिन कहीं ना कहीं ये आज़ादी कुछ लोगों के लिए बेबुनियाद है, सिर्फ और सिर्फ नाम की है। उनसे पूछिए जो आज भी गुलामी को महसूस करते हैं, उनसे पूछिए जो आज भी किसी ना किसी दर्द को छुपाए बैठे हैं। खैर श्रोताओं, आज़ादी तो हमें दी है, हम ये नहीं कह सकते कि आज़ाद नहीं है। हम आज़ाद हैं उन विदेशी लोगों से जिनके हम

कोड़े खाते थे और उनकी गुलामी किया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कई जगह हम लोग आज़ाद नहीं हैं। वो आज़ादी हमें कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, ये सोचना बनता है। आज एक इंसान के अंदर वो दर्द, वो प्यार ख़त्म होता जा रहा है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो। आज किसी एक छोटी सी नोकझोंक के लिए बच्चों को नदी में फेंक दिया जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं श्रोताओं, जो अगर हम करने लगें तो शायद ये समय हमें कम लगे। तो सोचिए और विचारिए, उन पशुओं के बारे में सोचिए जिन्हें पूजा जाता था। गाय दूध देने के लिए ही नहीं, बहुत सारे हमारे घरों में ऐसे पूजा पाठ होते थे जब गाय का गोमूत्र और गोबर इस्तेमाल आज भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनका दूध सूख जाता है, वो दूध देने के लायक नहीं रहती हैं, तो उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। वो बैल जो कभी हमारी खेतों में लहलहाती फसलों को उगाने में हमारा साथ दिया करते थे, आज वो हमारे किसी काम नहीं आ रहे, और आज उन्हें आप आवारा सड़कों पर देख सकते हैं। कोई भी गाड़ी वाला आता है, अपनी स्पीड से निकल जाता है, और किसी गाय को, किसी बैल को अगर वो मारता है तो उसे ये लगता है कोई बात नहीं, इसके लिए कौन आए, कौन ही लड़ेगा, कौन ही हम पर केस करेगा, हमें कौन सा इसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा। ये सोच है श्रोताओं जो कि हमारी गुलाम है। मैं ये कहूँगी कि हमारी सोच गुलाम है, इसे आज़ाद कीजिए और अच्छी सोच को अपनाइए। कार्यक्रम में बातें बहुत सी हैं श्रोताओं, लेकिन बहुत लंबी बातें भी नहीं करेंगे, आपका मनोरंजन भी हमें करवाना है। तो चलिए कार्यक्रम में लेते हैं एक और प्यारा सा गीत, आई मिलन की रात। इस फिल्म का गीत श्रोताओं आप सभी के रेडियो सेट पर अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में।

बिल्कुल श्रोताओं, देखें अपनी किस्मत में कांटा है या फूल है, लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर हमारी किस्मत में कांटे हैं भी तो उन्हें धीरे धीरे हमें निकालने की कोशिश करनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए फूल खिलने का, और फूल भी ज़रूर खिलता है। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम जुड़ेंगे कार्यक्रम में और अपनी बातों को जारी रखेंगे और साथ ही आपका करवाएंगे मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

बिल्कुल श्रोताओं, गूंज अपने पन की, और आप इस गूंज के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, कार्यक्रम में हम आपके साथ बातचीत भी करते हैं और ज़रूरी जानकारियां जो हम तक पहुंचती हैं उन्हें भी हम आगे पहुंचाते हैं, यानी कि आप तक पहुंचाते हैं। तो चलते हैं जानकारियों की ओर और लेते हैं जानकारी। शाहपुर बस स्टैंड में 40.28 लाख रुपए की लागत से नया इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। इसके लिए धनराशि स्वीकृत होने पर शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार जताया। श्रोताओं, केवल सिंह पठानिया ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। इनके सुचारू संचालन के लिए शाहपुर बस स्टैंड में ही चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। परिवहन एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ चार्जिंग स्टेशन के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है तथा संबंधित विभागों को जल्द आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही श्रोताओं, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के रूट विस्तार को लेकर भी परिवहन विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर और सुगम परिवहन सुविधा मिल सके। विधायक ने कहा कि शाहपुर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से इलेक्ट्रिक बस सेवा को मजबूती मिलेगी तथा क्षेत्रवासियों को पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने, और इस जानकारी के बाद बातों के इस सिलसिले को हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। श्रोताओं, नितिन मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ों में बलमा फिल्म का ये गीत हम पहुंचा रहे हैं आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

0: श्रोताओं, मेरे ख्याल से तुम बड़े खूबसूरत हो और मुझे लगता है कि जो हमारे श्रोता हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। क्या श्रोताओं, सच में ऐसा है? अब आप सभी ये कहेंगे कि खूबसूरती तो अब देखने से ही पता चलती है, लेकिन उस खूबसूरती की बात हम कर ही नहीं रहे। श्रोताओं, शक्ल जो है वो हर किसी की एक जैसी नहीं होती, हर किसी को अपनी अपनी शक्ल उस परमात्मा ने दी है, लेकिन असली खूबसूरती होती है उसका दिल, उसका मन और उसकी सोच और विचार। आपकी सोच विचार कैसे हैं, आपकी मन कैसा है, आपका दिल कैसा है, इन पर ही निर्भर करता है आपकी खूबसूरती। और मन और दिल कैसा होना चाहिए श्रोता, वो आजकल के समय में दया दिल में होनी चाहिए, इंसानियत इंसान में होनी चाहिए, बड़े छोटे का लिहाज अपने व्यवहार में होना चाहिए, बड़ों की इज्जत होनी चाहिए, छोटों के प्रति प्यार और स्नेह होना चाहिए, हमारा दिल हमारा दिमाग बड़ा होना चाहिए, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, सोच छोटी नहीं होनी चाहिए, हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि आज हम बार बार अपनी ही बेटियों को, अपनी ही लड़कियों को ये ना कहें कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, या इस समय कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, या ऐसे कपड़े पहनकर मत जाओ। हमारी सोच होनी चाहिए कि हम अपने बेटों को सिखाएं कि अगर इस समय अंधेरा हो रहा है और कोई लड़की, कोई भी आपको बहन ऐसी मिल जाती है जो अकेली है, जिसे घर पहुंचने में देर हो रही है, तो उसे उसके घर पहुंचा कर आएँ और उसकी इज्जत करें, उसे अपनी बहन अपनी बेटी की नज़र से देखें। अपने बेटों को हम बताएं कि एक औरत एक माँ होती है, बहन होती है, किसी की बेटी होती है, उसे उसी नज़र से हमें देखना चाहिए जिस नज़र से हम अपनी माँ या अपनी बहन को देखते हैं। वही सोच रखने वाला इंसान श्रोताओं आज की डेट में खूबसूरत है। खैर, गीत ने ये हमें कहाँ पहुँचा दिया, हम बातों को कहाँ ले गए, लेकिन फिर भी श्रोताओं ये गीत ही हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारी सोच को लिए चले जाते हैं, और हमें भी गीतों के साथ अपनी सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, सोचना चाहिए, इन विचारों पर थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए। खैर, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी का हिसाब किताब पर, और श्रोताओं अगर सोचा जाए तो हमने क्या पाया, हमने विज्ञान में प्रगति की, तकनीक में आगे बढ़े, सड़कें, संचार, डिजिटल सुविधाएं और शिक्षा के नए अवसर बहुत ज़्यादा बढ़े, हमने लोकतंत्र को आगे बढ़ाया और दुनिया के सामने अपनी पहचान मजबूत की। लेकिन क्या अभी भी कुछ पन्ने अधूरे हैं? बिल्कुल। गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, भेदभाव, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य की असमानता। तो श्रोताओं, इस पर भी हमें सोच विचार करना चाहिए कि क्या ये सभी चीज़ें आज हमारे पास बिल्कुल सही हैं, या ये पन्ने जो हैं किताब में अभी भी अधूरे हैं। विचार कीजिएगा श्रोताओं, और विचार के साथ साथ गीत का भी आनंद लीजिए। तो चलिए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हम लेकर आए हैं गुंडा राज फिल्म से, और इस गीत को आवाज़ों से सजाया है अलीशा चेन्नई और कुमार शानू ने।
1: नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।

91.2 MHz पर श्रोता हूँ आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कुछ ही समय बाद यानी कि 7 बजे श्रोताओं आप सुनेंगे समाचार और अब हम कार्यक्रम में लगाने जा रहे हैं पंजाबी तड़का। तो बिल्कुल इस पंजाबी तड़के के साथ हम आपको नाचने के लिए भी कहेंगे क्योंकि पंजाबी गीत जहाँ बज पड़ता है श्रोताओं नाचने का मन कर चलता है। तो लीजिए इस प्यारे से गीत को सुनिए और अगर आपका मन कर जाए नाचने का तो ज़रूर नाच भी लीजिएगा। लखविंदर बडाली की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप तक।

0: मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पूंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉक्टर पेमा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थियों लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉक्टर पेमा सानी और जिलाधिकारी साई कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौता पर हस्ताक्षर भी किए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वे राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कंठन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। उपराष्ट्रपति ने 2014 के बाद से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के विस्तार और उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की शानदार पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। और एक बार फिर से सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। श्रोताओं, अपने कार्यक्रम का हमारा आधा सफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है, यानी कि कार्यक्रम जो कि जिसका समय रहता है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, और अब समय जो है वो अपनी गति से फटाफट दौड़ रहा है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में गीत संगीत के साथ साथ हम बात कर रहे थे आज आज़ादी के हिसाब किताब के बारे में। श्रोताओं, देखिए, कमियां और गलतियां ढूंढने में हम बहुत तेज़ हैं, हम लोग फटाफट पकड़ लेते हैं किसी की कमी किसी की गलती, लेकिन जहां अच्छी बात हो वो हमें याद ही नहीं रहती। आपने भी देखा होगा कि कल जैसे कि हमने 15 अगस्त का दिन मनाया, बड़े धूमधाम से मनाया, और उसके तुरंत बाद ही हमने सोशल मीडिया पर देखा कि बहुत सारे लोगों ने डाला, कहीं पर झंडे उल्टे लिए हुए थे, नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी जैकेट में जो रुमाल या जो कलर्स डाले थे वो सही सीक्वेंस में नहीं थे। ये सब बातें हम लोगों ने बहुत सारा सुनी, लेकिन बहुत कम लोग थे जिन्होंने बात की कि नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान में हमें क्या क्या दिया, क्या क्या कहा। तो उन पर भी अगर हम विचार कर लें तो वो बहुत फ़ायदे की बातें थी। खैर श्रोताओं, नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में बहुत सारी अच्छी बातें कहीं, बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो हमारे युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 1 साल में 1 करोड़ यंगस्टर्स को AI की जॉब दी जाएंगी, उसके लिए घर पर बैठे ही AI की स्किल्स को जो है वो सीखने का मौका हमारे युवाओं को, बच्चों को मिलेगा। और साथ ही श्रोताओं, जो एग्ज़ाम्स होते हैं कम्पिटिटर्स एग्ज़ाम्स, जैसे कि UPSC ले लीजिए, SSC ले लीजिए, JEE मेंस ले लीजिए, नीट की एग्ज़ाम्स ले लीजिए, इन एग्ज़ाम्स को तैयार करने के लिए हमारे बच्चों को या अभिभावकों को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा कि मिडिल क्लास के बच्चों को अब घर बैठकर ही ऑनलाइन कोचिंग जो है वो इन टेस्ट की तैयारी करने के लिए दिया जाएगा। तो श्रोताओं, ऐसी बहुत सारे उन्होंने वादे जो हैं वो किए हैं, और वो अपने वादों को पूरा भी करते हैं, ऐसा सभी जानते भी हैं, और हम भी उम्मीद करेंगे कि उनके ये वादे सच हों। तो कहने का मकसद यही है कि बुराइयों को ना देख के अच्छाइयों की ओर अगर हम नज़र रखें तो हमारे लिए भी फ़ायदा रहेगा। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत को यहीं पर रोकते हैं, और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर। लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को आप सभी, आपने रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और आप सभी समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। इस गीत के बाद श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और फिर से रुख करेंगे जानकारियों की ओर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के रिज मैदान पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल प्रदेश से विशेष लगाव था। वह मनाली स्थित अपने आवास पर समय समय पर छुट्टियां बिताने आते रहते थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास रखते थे, जो वर्तमान समय में कम देखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। मुख्यमंत्री ने उनके देश और प्रदेश के विकास में दिए योगदान को भी याद किया। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने देशभक्ति के गीतों का गायन भी किया। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने, और जानकारी के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में हम लौटेंगे वापस और आपको लिए चलेंगे आरजू फिल्म के इस गीत की ओर। तो लीजिए श्रोताओं, सुनिए इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। साथ ही श्रोताओं थोड़ी सी बात हम करेंगे कल को लेकर, यानी कि कल 17 अगस्त का दिन है। कल 17 अगस्त को नागपंचमी भी है और संक्रांति का पावन अवसर भी है। सावन की हरियाली और हिमाचल की समृद्ध लोक परंपराओं से जुड़ा ये दिन हमें प्रकृति, जीव जंतुओं और अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान का संदेश देता है। और साथ ही श्रोताओं हिमाचल की बात करें तो ये दिन बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है, ख़ास करके जो नवविवाहिता लड़कियाँ या महिलाएँ होती हैं उनके लिए ये जो समय है ये खुशी का होता है, क्योंकि शादी के बाद हमारे यहाँ एक रिवाज है कि कल से जो महीना शुरू होने वाला है, जिसे हम अपनी हिमाचल की पहाड़ी भाषा में कहें तो काला महीना भी कहते हैं, और काला महीना काटने के लिए जो लड़कियाँ हैं वो अपने ससुराल से अपने मायके आती हैं। तो ऐसी मान्यता है कि इस महीने में जो सास है और बहू है वो साथ नहीं रहती हैं। तो खैर इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो तो नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहाना होता है एक लड़की के लिए एक लंबी छुट्टी लेकर अपने मायके आने का। और श्रोताओं सच में ये महीना बहुत ही अच्छा महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे ऐसे त्यौहार और बहुत सारे ऐसे दिन जो हैं हम मनाते हैं और खुशी से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो श्रोताओं संक्रांत जो है वो कल है, यानी कि कल सभी की किचन में बहुत अच्छी अच्छी पकवान बनने वाले हैं और जिसकी खुशबू से घर महक जाएगा। तो आप सभी को हमारी ओर से कल नागपंचमी की और संक्रांति की शुभकामनाएं, और यही हम दुआ करेंगे कि आपकी

की लिस्ट में रखा जाता है। लेकिन कुछ एक गीत ऐसे होते हैं जो सैड तो नहीं होते लेकिन बहुत गहराई उन गीतों में रहती है। ऐसा ही एक गीत है जो आपके लिए कार्यक्रम में लेकर आए हैं। श्रोता, इस गीत को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस गीत में कुछ एक ऐसी लाइनें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, समझाती हैं। मैंने भी ये गीत सुना था और जब मुझे भी इस गीत के बारे में पता चला तो सुनकर अच्छा लगा। आप भी सुनिए कि वो कौन सी लाइन होगी जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए इस गीत को और उस गीत के बाद उस लाइन के बारे में आपके साथ ज़रूर हम कार्यक्रम में बात करेंगे। तो आशा भोसले की आवाज़ में लीजिए सुनिए इजाज़त फ़िल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये गीत, और इस गीत को लिखा है गुलजार साहब ने। श्रोताओं, कहते हैं कि इस फिल्म को जितने लोगों ने देखा वो सभी जानते हैं कि इजाज़त फिल्म अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी फिल्म थी, और इसमें गीतों में बहुत ही गहराई है। जैसा कि अभी आपने सुना ये गीत श्रोताओं, और इस गीत में एक लास्ट पैराग्राफ में एक लाइन आई थी, 116 चांद की रातें। बड़ी गहरी बात है श्रोताओं, और जब हम गीतों को लिखते हैं, लिखने वाले बहुत ही बारीकी से हर एक चीज़ को फील करते हैं, समझते हैं, तभी वो उस गीत की उस लाइन को बना पाते हैं। श्रोताओं, गुलजार साहब इसकी जगह कोई और भी नंबर लिख सकते थे, 116 चांद की रातें इसकी जगह 117, 118 कोई भी नंबर हो सकता था, लेकिन उन्होंने 116 नंबर का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि 4 महीने में 120 दिन और 120 रातें होती हैं, पर उसमें से अगर हम 4 अमावस की रातें घटा दें तो बचते हैं 116 रातें। और श्रोताओं, इस फिल्म में जो करेक्टर है, अभिनेता और अभिनेत्री, उनमें इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि जो अभिनेत्री थी उस मोहब्बत में एक एक छोटी छोटी बात को भी बड़े ही बारीकी से याद रखती थी। हर दिन, हर रात, कौन सी रात गई, कैसा वो पल था, हर उस चीज़ को बड़ी ही बारीकी से उन्होंने सोच के रखा था, और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब ये गीत गाया गया तो 116 रातों की बात की गई। तो श्रोताओं, आजकल की मोहब्बत भी होती है, लेकिन आजकल की मोहब्बत में वो बात नहीं जहाँ एक एक रात, एक एक मिनट, एक एक दिन और एक एक ऋतु का हिसाब रखा जाता हो। हमसे कोई पूछे कि हम जिससे हमने प्यार किया होगा या हम करते हैं, हमने उनसे पहली मुलाकात कब की, हफ्ते में कितने दिन मिले या साल में कितने दिन मिले, तो शायद हमें कुछ भी याद नहीं होगा, हम ब्लैंक होंगे। तो श्रोताओं, ये उस टाइम की मोहब्बत की बात है जब हर एक छोटी सी छोटी बात को भी बड़े ही प्यार से संभाल के रखा जाता था। खैर, ये तो थी गीत की बात, और इसके बाद अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और एक और गीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद फिर से हम कार्यक्रम में जुड़ेंगे, तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आपको सुनवाते हैं कहानी, एक प्रेरणादायक कहानी जिसे हम लेकर आते हैं आप तक। और आज भी ऐसी कहानी जो है श्रोताओं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, तो आप सभी तैयार होंगे उस कहानी को सुनने के लिए। श्रोताओं आज की कहानी जो है वो एक चाबी की और एक हथौड़े की है। चाबी और हथौड़ा आपस में बात करते हैं श्रोताओं, और हथौड़ा जो है वो कहता है कि चाबी से कि हम दोनों एक ही जात बिरादरी के हैं, यानी कि हम दोनों लोहे से बने हुए हैं। लेकिन जब कहीं किसी ताले को खोलने की बात आती है तो मैं जो कि इतना मजबूत हूँ लेकिन फिर भी उस ताले को इतनी आसानी से नहीं खोल पाता हूँ, लेकिन तुम वो काम एक सेकंड में कर देती हो, ऐसा क्यों है? तो श्रोताओं चाबी जो है वो जवाब देती है कि बेशक हम एक ही चीज़ से बने हैं, हम लोहे से ही बने हैं, लेकिन मेरा काम करने का तरीका और है, मेरा सोचने का तरीका और है, और तुम्हारा तरीका और है। तुम कहीं पर भी जब कोई काम करते हो तो तुम अपनी जो रौब है वो दिखाते हो, तुम एकदम से प्रहार करते हो, तुम उस चीज़ के ऊपर ज़ोर से वार करते हो। लेकिन मैं जो हूँ वो एक ताले को आराम से इसलिए खोल पाती हूँ क्योंकि मैं सीधा उसके दिल तक जाती हूँ। तो श्रोताओं बहुत बड़ी बात है, और चाबी ने ये बात कहकर हथौड़े को थोड़ा सा शर्मिंदा भी कर दिया। और सच में बात बहुत बड़ी है। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि किसी के दिल तक अगर हम पहुँच जाएँ तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ ज़ोर ज़बरदस्ती से या हम गुस्से से उस चीज़ को करेंगे तो उतनी बड़ी बात नहीं है, और ज़ोर दिखाने में वो बात नहीं है। जो प्यार से बात बनती हो उसे प्यार से ही करना भी चाहिए। तो श्रोता ये छोटी सी कहानी थी लेकिन कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छी सीख जो है वो देकर गई है। इस कहानी के बाद अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। श्रोताओं इस छोटी सी कहानी से आप बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से इस कहानी के बारे में सोचेंगे समझेंगे तो हमने तो एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ही आपको दिया है, लेकिन कहानियाँ बहुत कुछ सिखाती हैं अगर हम उनसे कुछ सीखना चाहें तो। तो कहानी के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। जी सुनिए श्रोताओं कार्यक्रम में जंजीर फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में।

0: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना गुड इवनिंग धर्मशाला। श्रोताओं, कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हम आपके साथ करते हैं, जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं और मनोरंजन के लिए लेकर आते हैं प्यारे प्यारे गीतों को भी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये गीत पसंद भी आते होंगे। श्रोताओं, नए विचार और नई बातों के साथ हम लोग हमेशा आते रहते हैं और हमारे जो श्रोता हैं वो हमारे साथ जुड़ते भी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज जो भी बातें हमने की हैं वो ज़रूर अच्छी लगी होंगी और गीतों को भी आपने एंजॉय किया होगा। तो अब कार्यक्रम में समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का, अब चलेंगे हम शिमला, सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी शिमला है, अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में 1 सितंबर से शुरू होगा जनगणना का दूसरा चरण, कल से मिलेगा स्वगणना का विकल्प। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर कर्मचारियों व पेंशनरों की मांगों को अनसुना करने का लगाया आरोप। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि, और प्रदेश के 4 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, विभिन्न जिलों में 109 सड़कें अभी भी अवरुद्ध। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के बर्फीले इलाकों में जनगणना का दूसरा चरण 1 से 30 सितंबर के बीच चलाया जाएगा। इन इलाकों के नागरिकों की सुविधा व आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल 17 अगस्त से 31 अगस्त तक स्वगणना का विकल्प भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। जनगणना कार्य निदेशक दीपशिखा शर्मा ने संबंधित क्षेत्रों के लोगों से इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आह्वान किया है। जनगणना के दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक व आर्थिक जानकारी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार दर्ज की जाएगी। इस बार जनगणना की प्रक्रिया को डिजिटल तकनीक से संचालित किया जा रहा है, जिससे आंकड़ों के संग्रहण, निगरानी व प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि चौपाल विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण पर करीब 130 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ठियोग विधानसभा क्षेत्र में आज रिहाली मेले के समापन पर उन्होंने कहा कि शिमला जिला में छैला सैंज नेरीपुल यशवंत नगर सड़क के लिए 239 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के निर्माण के लिए सभी औपचारिकताएँ पूरी की जा रही हैं। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों की मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री झूठे आश्वासन देने के आदी हो चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब राज्य की खराब आर्थिक स्थिति के बहाने अनाथों और विधवाओं के नाम पर पेट्रोल डीजल पर सेस वसूल कर सरकार चलाई जा रही है। प्रदेश भर में कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रदर्शनों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और उनकी चुनावी गारंटियां, बजट घोषणाएं और वायदे केवल कागजों तक ही सीमित रह गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए 200 रुपये का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। NTA ने उम्मीदवारों से केवल अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हुई है। नाहन विधानसभा क्षेत्र के कटासन माता मंडल में आज मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि करीब 4 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस नेताओं ने जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय अपने लिए सुख सुविधाएं जुटाने का काम किया है। बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वर्तमान कार्यकाल में भाई भतीजावाद और मित्रवाद को बढ़ावा मिला है, जबकि जनता को समस्याओं के बीच छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली से प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। भाजपा ने आज पालमपुर में जिला स्तरीय पूर्व कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहे और पूर्व कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकारों ने कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के साथ सकारात्मक निर्णय भी लिए हैं। इस दौरान प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों, युवाओं, व्यापारियों और बागवानों के हितों की अनदेखी की जा रही है।
2: हिमाचल प्रदेश जिस दौराहे पर खड़ा हो गया, कर्मचारियों के साथ साथ व्यापारी, बागवान, महिलाएं, आपके पढ़े लिखे हुए बच्चे हैं, आपके परिवार में प्रगतिशील महिलाएं हैं, वो आज दौराहे पर खड़ी होकर के लाचारी की अवस्था में ये कह रही हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश को अपने हाथों से सुंदर ईंटें बना करके जो खूबसूरत बनाया था, आज हमारे हक के ऊपर डाका डाला जा रहा है।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला स्थित लोकभवन में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी दूरदर्शी और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान व्यक्तित्व थे और उनके योगदान से भावी पीढ़ियाँ निरंतर प्रेरणा लेती रहेंगी। राज्यपाल ने कहा कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत को लेकर वाजपेयी की दूरदर्शी सोच आज भी देश की विकसित भारत की निरंतर यात्रा में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने सत्ता में बने रहने और सरकार को बचाए रखने के लिए कभी भी ईमानदारी व सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास रखते थे और देश के निर्माण में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाना चाहिए।
3: आज अटल जी की आठवीं पुण्यतिथि है, वो देश के प्रधानमंत्री बने, निश्चित रूप से हिमाचल से उनका एक लगाव था। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है। वो सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास करते थे, जो आजकल बहुत कम देखने को मिल रही है।
1: इस दौरान विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी करोड़ों देशवासियों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को वाजपेयी की देश के लिए सबसे बड़ी देन बताया।
4: अटल जी का देश के लिए बहुत बड़ा योगदान इस रूप में रहा है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उन्होंने शुरू की। उस योजना के अंतर्गत पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल आज चौतरफा पहुंचा है ग्रामीण क्षेत्रों, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से। और उनका ये मानना था कि सड़कें अगर गाँव तक पहुँचेगी तो गाँव का विकास होगा। गाँव में गरीब आदमी को अपनी फसल, एक किसान को एक अपनी फसल, बागवान को अपनी फसल मार्केट तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी। बीमार आदमी को पीठ पर नहीं उठा करके गाड़ी में हॉस्पिटल तक ले जाने की सुविधा मिलेगी।
1: भाजपा विधायक बलवीर वर्मा, शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान और पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस दौरान मौजूद रहे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा ने मोर्चा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक सक्रिय व मजबूत बनाने का आह्वान किया है। हमीरपुर जिला किसान मोर्चा की आज बड़सर में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा भाजपा की संगठनात्मक ताकत का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में किसान मोर्चा की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में हल्की वर्षा जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। हालांकि राजधानी शिमला व आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कुछ जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। कल 17 अगस्त को बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। इस बीच मानसून की वर्षा के चलते प्रदेश में अभी भी 109 सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि 200 से अधिक पेयजल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हैं। इस मानसून सीजन में प्रदेश में अब तक 187 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांगड़ा जिले के शाहपुर बस अड्डे में करीब 46 लाख रुपए से नया इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। स्थानीय विधायक व उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने चार्जिंग स्टेशन के लिए धन स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इससे शाहपुर में इलेक्ट्रिक बस सेवा को मजबूती मिलेगी और लोगों को पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के बर्फीले क्षेत्रों में 1 सितंबर से शुरू होगा जनगणना का दूसरा चरण, कल से मिलेगा स्वगणना का विकल्प। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर कर्मचारियों व पेंशनरों की मांगों को अनसुना करने का लगाया आरोप। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। और प्रदेश के 4 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, विभिन्न जिलों में 109 सड़कें अभी भी अवरुद्ध। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और समाचारों के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब हमारे पास कुछ ही मिनटों का समय है। तो अब जाते जाते बस आपसे यही कहना चाहेंगे, सच्चा धन सोना या चांदी नहीं बल्कि आपका स्वास्थ्य है। अपने स्वास्थ्य की का ध्यान रखिए और बरसात के इस मौसम में भी अपना और अपने घर वालों का, परिवार का, आस पड़ोस का भी ख्याल रखिए। और आज के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, तीसरी मंजिल फिल्म से आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला को संपन्न करने की मुझे यानी कि आप अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
4: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो। है
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
9: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
14: मैं तो बुरी ही ठीक।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
4: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
9: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
16: मैं तो बुरी।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

0: श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी की रात में चांदी के रंग से चटनी चटाया।
4: चटाई।
2: ओहो। दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
9: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
16: मैं तो बुरी।

सिंह। कोई तो बताओ, कोई समझाओ, दिल इसको दूं या उसको दूं।

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: जाते हो या जबरदस्ती करो?
1: जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। केवल इतना बता दीजिए कि आप हमसे प्यार तो करती हैं ना?
0: नहीं
1: थोड़ा भी नहीं,
0: नहीं
1: झूठा भी नहीं?
0: नहीं नहीं नहीं

रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।
1: शंभु की प्यारी, गिरिराज की दुलारी, गिरिजा कपक कपक कपक करुड़ा गौरवाली।